रहागर डिशो में हरदम मेरे इश्क का सितारा मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी दो बदन। वो कौन थी इसी फिल्म से हम आपको सुनाने वाले हैं एक बहुत सा सुंदर गीत है ये, चलिए मिलकर सुनते हैं।

सुनने वाला कुछ सेंटिमेंटल सॉन्ग्स अभी हमने चलाए हैं आप सभी के वास्ते, तो चलिए कुछ लोकल सॉन्ग्स हम चलाने वाले हैं। शहीद वाहिद हुसैन जी की आवाज़ में आप सुनेंगे, तुम मुझे यूँ भूला ना पाओगे।

अभी आप सुन रहे थे शहीद वाहिद हुसैन जी की आवाज़ में तुम मुझे यूँ भूला ना पाओगे। नदीम खान इस बार प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों। हिसा के फूल पे आती कभी बहार नहीं।

नदीम खान आपको सुनाने वाले थे खिजा के फूल पे आती कभी बहार नहीं। उमर वाहिद हुसैन आ रहे हैं प्रोग्राम में सुनने वालों एक बहुत सुंदर सॉन्ग के साथ, तुम जब भी याद आओगे।

जब भी याद आओगे ये दिल भर आएगा। अभी आप सुन रहे थे उमर वाहिद हुसैन जी की आवाज़ में। नदीम खान एक बार फिर से प्रोग्राम में आ रहे हैं। सुनने वालों, कहाँ कहाँ पे न जाने भटक रहे होते, तुम्हारा प्यार न मिलता तो मर गए होते।

नदीम खान जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे, कहाँ कहाँ पे न जाने भटक रहे होते, तुम्हारा प्यार न मिलता तो मर गए होते। सुनने वालों, आप सभी सुनने वालों के वास्ते मैं कुछ कहना चाहूँगी और वो ये है, स्वस्थ सबसे बड़ा उपहार है, संतुष्ट सबसे बड़ा संपत्ति, मुस्कान सबसे बड़ी ताकत और वफादारी सबसे बड़ा रिश्ता। आपका दिन मंगलमय हो। चलिए वारिका रामसुकुल जी की आवाज़ में ये गीत हो जाए।

वारिका राम शुक्ल जी की आवाज में भी आप सुन रहे थे तूने जिंदगी में आके जिंदगी बदल दी। चलिए यहाँ से प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं। सुनने वालों, नदीम खान आपकी आवाज यानी नदीम खान की आवाज में आप सुनेंगे कभी तो नजर मिलाओ।

अभी आप सुन रहे थे कभी तो नज़र मिलाओ कभी तो करीब आओ, नदीम खान आपको सुनाने वाले थे।

सुनने वालों, एक छोटा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है। चलिए प्रोग्राम को फिर हम आगे में बढ़ाते हैं और उमर वाहिद हुसैन जी की आवाज़ में आप सुनेंगे। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए।

अमर वाहित हुसैन जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे सुनने वालों। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, कुछ मिले जुले गीत के साथ हम आप सभी की सेवा करने वाले हैं सुनने वालों। वादिका राम सुकुल जी की आवाज़ में आप सुनेंगे सजन मोरे आ जा रहे।

अभी आप सुन रहे थे उड़ उड़ जाए निंदिया मोरी, वारिका राम सुकुल जी आपको सुनाने वाले थे। सुनने वालों, गलिया से गलिया

गलियां से गलियां अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, संदीप बदलुची की आवाज़ में हम पेश करते हैं बुढ़वा का खोजे है चिकना खोजे है, और ये गीत हम पेश करते हैं शांति माताई जी के वास्ते जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं। तो शांति माताई आप ही के नाम हम पेश करते हैं।

यानी संदीप बदलू जी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे। देखो बुढ़ुआ दरुया पी के चिकना खोजे हैं, और ये गीत हमने पेश किए हैं शांति मताई जी के वास्ते, जो हमारे देश में मेहमान बनकर आए हैं। आनंद भजन जी प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों, गोरे गोरे गालों पे काला गुदनवा।

गोरे गालुप के गोदनवा जुलुम करना अभी आप सुन रहे थे आनंद भजन जी की आवाज में। जरा सा हम देखे तो दविंदर सिंह शिवनाथ जी प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों, चलिए मिलकर सुनते हैं

दविंदर सिंह शिवनाथ जी आपको सुनाने वाले थे शिवली ग्याव, जॉय शिव प्रसाद और रायन मनोरथ जी की आवाज़ में आप सुनेंगे आपके आ जाने से।

अभी आप सुन रहे थे जॉय शिव प्रसाद और रायन मनोरथ जी की आवाज़ में आपके आ जाने से। इट्स विनोद लक्ष्मण प्रोडक्शन अगेन। दविंदर सिंह सिवनाथ जी की आवाज़ में आप सुनेंगे आजा गोरिया। कहाँ कहाँ आजा, आप खुद सुन लीजिएगा।

0: सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुने हमारे हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने पर आया।
1: कहाँ जाऊंगा,
0: जिस तरह से हमने अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश किए हैं, मैं आशा है कि प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आए हुए होंगे। अगर जिंदगी बाकी रहा तो आने वाले रविवार को हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए हमारी प्यार भरी, राम राम नमस्कार, खुदा हाफिज। Have a nice day and take care of yourself. Till next time.

प्रोग्राम को जारी करते हुए सुनने वालों, एक बहुत सा सुंदर गीत हम पेश करने वाले हैं आप सभी के वास्ते, पिया बसंती रे।

सुनती रे कहे सताए आजा, अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों। जबकि मौसम इतना अच्छा है तो क्यों ना ये सॉन्ग हो जाए फ्रॉम द मूवी थोड़ी सी बेवफाई।

मौसम मौसम लवली मौसम अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी थोड़ी सी बेवफाई, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। और जबकि मौसम की बात होती है तो चलिए ये गीत हो जाए फ्रॉम द मूवी तोहफा से हम पेश करते हैं, अलबेला मौसम कहता है स्वागतम।

अभी आप सुन रहे थे अलबेला मौसम कहता है स्वागतम फ्रॉम द मूवी तोहफा से हमने पेश किए है अदालत है फिल्म का नाम। चलिए इसी फिल्म से ये सॉन्ग हो जाए।

अदालत है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हमने पेश की है और तुमसे दूर रह के। चोरी चोरी कोई आए फ्रॉम द मूवी नूरी से हम पेश करते हैं।

सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी नूरी से हमने पेश किए हैं सुनने वालों, तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे।

साथ हो जब अपने फ्रॉम द मूवी कालिया से हमने पेश किए हैं दिल लगी निधि हवा।

लगी ने दी हवा, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी दोस्ताना से हमने पेश किए हैं। ओ मेरी जान, बोल मेरी जान।

जान भी आप सुना रहे थे और जरा सा हम देखें मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं शारी शहर में आप सा कोई नहीं।

0: आशिक मेरा नाम है
1: आशिक
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है ऐश करना मेरी जान मेरा काम है
1: ऐसे भी हो, हमको शिकार

0: करता हूँ आशिक मेरा नाम है
1: आशिक
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है ऐश करना मेरी जान मेरा काम है
1: ऐसे भी हो तुम

0: सारे शहर में आप सा कोई नहीं, अभी आप सुन रहे थे हमको तो यारा तेरी यारी जान से प्यारी।
1: एक नहीं तीन थप्पड़ मार सकती है, वन टू थ्री का।
2: वेरी स्वीट।
1: यस सर, आई एम वेरी
2: स्वीट। तुम बार बार घड़ी क्यों देख रहे हो?
1: टाइम देख रहा
2: हूँ। तुम टाइम देख रहे हो? ओ, मैं समझी तुम टाइम देख रहे हो। क्या टाइम है?
1: 11:28।
2: 11:28 मिनट। बाप रे,
1: क्या हुआ?
2: मैं जाती हूँ, तेरा बाप मुझे पकड़ लेगा।
1: काजल,

0: अभी आप सुन रहे थे जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में लता मंगेशकर जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी भीगी पलके। और जैसे मैंने आपको बतलाई कि ये गीत एक आखिरी गीत यानी एक अंतिम गीत था स्मिता पटेल और राज बब्बड़ का, और ये गीत भी मेरे दिल के बहुत करीब है। निकाह है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं बीते हुए लम्हों की कसक।
1: भी अलविदा मत कहो।

बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, फ्रॉम द मूवी निकाह से हमने ये गीत पेश किए हैं। मोहब्बत इबादत अभी आपने सुने हैं, और एक फिल्म का नाम है मोहब्बत के दुश्मन, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं ओ जानू मेरी जान भी तू है।

अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी मोहब्बत के दुश्मन से, मोहब्बत इबादत यानी ओ जानो मेरी जान भी तू है, जान तो क्या ईमान भी तू है। पले खान है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मेरे सनम तेरा खत मिला।

मेरी सनम तेरा खत मिला, खत में तूने खत लिखने को लिखा, खत के बदले मैं आ गई। अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों वारिस, जी हाँ वारिस है फिल्म का नाम। लता जी के साथ में सुरेश वड़कर जी आपको सुनाने वाले हैं घटा छा गई है।

मोफी वारिस से हमने पेश की है सुनने वालों, लता जी के साथ में सुरेश वड़कर जी आपको सुनाने वाले थे। घटा छा गई है, बहार आ गई है, ए हवा मेरे संग संग चलो। फ्रॉम द मूवी बाबू से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते

हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में हुई है हलचल। अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, छोड़ो भी ये नखरा, करो प्यार हमसे,

छोड़ो भैया नखरा करो प्यार हमसे, आया है मौसम मस्ती का झूम के अभी। चलिए एक और सुंदर सा गीत हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते। नहीं नहीं, मैंने गलत कहा सुनने वालों, एक ख़ास व्यक्ति के वास्ते जिनकर कल 45वां जन्मदिन जो है, तो सभी परिवार खुश होकर के उनके लिए ये गीत को मांग किए है। और वो यानी वो खुश नसीब कौन है, वो कोई और नहीं, मेरा भाई है। और प्रदीप नाथू का जबकि कल 45वां जन्मदिन जो है, तो धर्म पत्नी जो होते हैं अंशला भुलाई नाथू, अपने प्यारा प्यारा पति, दो बच्चे अलीशा और प्रियांशु अपने प्यारा प्यारा पिता के वास्ते ये गीत को मांग किए हैं। और सभी परिवार घेराव, सभी परिवार नाथू के तरफ से प्रदीप घेर यानी प्रदीप नाथू को ढेर सारे बधाइयाँ, शुभकामना, आशीर्वाद अभी से पेश किया जाता है।

0: स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार भी आप सुन रहे थे, और ये गीत हमने पेश किया है प्रदीप नाथू जी के वास्ते जिनकर कल 45वां जन्मदिन है। तो उनकी पत्नी जो है अंशला भुलाई नाथू, दो बच्चे अलीशा और प्रियांशु के तरफ से अपना प्यारा प्यारा पिता, और सभी परिवार नाथू, सभी परिवार घिराव के तरफ से प्रदीप को ढेर सारे बधाइयाँ, शुभकामना, आशीर्वाद मिले। मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, ये गीत हम पेश करते हैं प्रदीप जी के वास्ते जिनका कर 45वां जन्मदिन है। तो सभी बहन जैसे मैं, सीता, मालिनी और रेशमा खुश हो करके अपने भैया जी को ढेर सारे बधाइयाँ, शुभकामना, आशीर्वाद पेश कर रहे हैं ये सुंदर गीत के साथ।
1: तोहफे में है 5,000 सुनहरे गाने।

मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में जमाने सी कोई चीज़ ना लूँ। और ये गीत हमने पेश किया है प्रदीप नाथू जी के वास्ते, जिनकर का 45वां जन्मदिन जो है। तो सभी बहन खुश होकर के, जैसे मैं सीता मालिनी और रेशमा के तरफ से अपना प्यारा प्यारा भाई को ढेर सारे बधाइयाँ, शुभकामना, आशीर्वाद पेश किया गया। सरासा और प्रोग्राम को जारी करते हुए ये गीत हम पेश करते हैं।

सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुने हैं हमारे हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने पर आया। जिस तरह से हमने अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश किए हैं, हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आए हुए होंगे। अगर जिंदगी बाकी रहा तो हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, हमारे प्यार भरिए राम राम नमस्कार, खुदा हाफिज, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टिल नेक्स्ट टाइम।

मित्रों, आपको आज वो बात बतलाने जा रहा हूं जहां पर आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, यानी मृत्यु एक अटल सत्य है, इसे कभी नहीं बदला जा सकता है। मित्रों, इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है और चलता ही रहेगा। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। मित्रों, बार बार मृत्यु के बाद आत्मा नए शरीर को धारण करती है। आप भी, मैं भी, सभी लोग मित्रों, ये प्रकृति का नियम है। इसीलिए सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। मित्रों, आज में जी ले।

मित्रों, कल घर को जाना है, मतलब सभी लोग दुनिया छोड़कर एक दिन जाएंगे, यानी हम सभी मरेंगे एक दिन। कोई नहीं बचने वाला है, कोई नहीं। गरीब, धनवान, ताकतवर, दुर्बल, सभी जाएंगे। तुम भी, हम भी। मित्रों, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुराई कर्म करता है तो वो कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। तो जो दुख सुख आपको मिलता है, ये किसी के कारण नहीं है। कभी कभी हम उंगलियां दिखाते हैं उनके कारण, वो कार्रवाई से ठीक है, मगर आपका कर्म के अनुसार सब कुछ यहाँ मिले है। तुम्हारे करतूतों के कारण दुख सुख प्राप्त हुए है मित्रों। और जिस प्रकार सैकड़ों गायों के बीच, ध्यान करना, सैकड़ों गायों के बीच बछड़ा अपनी माँ को खोज लेता है, ठीक उसी प्रकार मित्रों, उसी प्रकार कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में आपको खोज लेगा, आपको खोज लेगा। ऐसुकुयू भगवान कहते हैं, किसी जीव को कष्ट देकर आप मुझे खुश नहीं देख सकते हैं, ये भगवान बोला था है। मित्रों, श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं, उनकी शक्ति कण कण में निवास करते हैं। भाई बहनों, छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट अनुभव कराता है। जैसे आपको दुख किसी ने दिया, मारपीट कर दी, तो आप रोते हैं, भगवान हमके मार दे। आप कहते हैं, देखिए भगवान तो के का करी, उसे लुकू सहंगा दो दूनंगायू। तो ऐसे मुर्गियाँ भी, ऐसे बकरियां भी, सभी लोग को पीड़ा होती है मित्रों। इसीलिए किसी भी जीव को कष्ट देना, किसी भी जीव को कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देना है। किसको? ईश्वर को कष्ट देने के समान है। तो सबसे मिल कर रहो, और ना सिर्फ बोलते रहो हम तो सबसे मिल के रहीला, हाँ हम किसी के ना देख के जरीला। तरवेल युना एस्तमांग दो सब के देख के जरे है, अनभली मनावत है, पसो है खबरदार। मित्रों, दीपक का जीवन इसीलिए, सुनिए, दीपक का जीवन, दीपक मतलब दिवाली, इसीलिए वंदनीय नहीं है कि वो जलता, बल्कि इसलिए वंदनीय है कि वो दूसरों के लिए जलता है। दूसरों से नहीं जलता है, दूसरों के लिए। मतलब आप भी दूसरों के लिए जिए ना, अपना भलाई करिए, दूसरों के भी भलाई करिए। मगर हम दूसरे के काहे भलाई करिए, पहले वापन करिए मित्रों, ठीक है, करते रहो जैसे जिए, चलते रहो। हमारी आस्था की प्रतीक्षा तब होती है मित्रों, जब हम जो चाहे वो ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। कुछ भी ना मिले फिर भी भगवान को धन्यवाद देते रहना। अगर सही मायने में आप अपना जीवन बदलना चाहते हो दोस्तों, तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि जैसा आपका मन रहेगा वैसा ही आपके विचार होंगे दोस्तों, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। नीच विचार रखोगे तो नीचे आओगे, नीचे आओगे। यो फादों, और
अच्छे विचार रखोगे, अच्छे विचार रखोगे तो ऊंचाई पर जाओगे मित्रों, ऊंचाई पर जाओगे। हाँ।

0: मित्रों, विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। क्या बना रहे? खोने का डर। मित्रों, और भगवान कहते हैं, चार वेदों का अर्थ नहीं भी जाने तो कोई बात नहीं, अनात्रोवी, मगर मित्रों तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई मनुष्य समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन चार शब्दों का मर्म यानी मतलब जान ले तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा, तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा मित्रों। मगर हम तो कोशिश नहीं करते हैं जीवन के मतलब समझने के लिए, सोचते हैं खाओ पियो मस्त रहो, मिली स्वीति, पैसा है, सब कुछ है, ये बात नहीं है दोस्त। बात ऐसे नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने वाले का शोक करते हैं और न ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, जैसे आप और हम करते हैं। अरे बप्पा मर जाइए तो का करब, मैया रे मैया है। तो जो अभी जिंदा है, क्योंकि वो जानते हैं जो मर गया वो फिर से जन्म लेगा, और जो जिंदा है वो एक दिन जरूर मरेगा। फर्क सिर्फ यही होता है मित्रों कि हम जान नहीं पाए हैं कि पिछले जन्म में हम क्या थे, क्या नहीं थे, कहाँ रह ली हम पिछले जन्म में, यही तोरिया हम लोग ना जान पाएला, तभी तो दुख होवे है मित्रों। मगर भगवान फिर भी कहते हैं ना कि केवल ज्ञान ही एक ऐसा अच्छाई तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता है, नहीं छोड़ता है मित्रों। मगर हम सोचते हैं कि भगवान तो हमके ना सोचत है, भगवान दूर हो गए हमसे। ऐसी बात नहीं है मित्रों, ये बात नहीं है।
1: मित्रों, इस भजन

मित्रों, कब मुलाकात आखिरी हो जाए, इस भजन को जरूर सुनिए। आप पूरे भजन को सुनना। धरती पर दोस्तों, धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव है, ठीक उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन सफलता, केवल तीन शास्त्रों से प्राप्त होती है मित्रों, धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य दोस्तों, कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। ऊंचा नीचा, जाति पाटी, सब अपने कर्मों से बनता है मित्रों। कुछ पाना है, ध्यान करना, कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, दूसरों पर नहीं, अपने पर भरोसा कीजिए और परमात्मा पर, क्योंकि सहारा कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं, साथ छोड़ ही जाते हैं दोस्तों। और धर्म, चाहे जो भी हो, चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब तुम्हारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। मित्र, गरीब है या अमीर ये मायने नहीं रखता, बल्कि वह आपकी बुरे समय में आपका साथ कितना देता है ये मायने रखता है। ये मतलब की बात है मित्रों, ये मतलब की बात है। और आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, ध्यान करना, कि आप क्या है, बल्कि ये इसे तय होता है कि आप मित्रों, कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता

मित्रों, इस गीत में हमने बतलाया है कि ना जाने कब आखिरी रात, कब आखिरी बात, कब आखिरी मुलाकात इत्यादि इत्यादि हो जाए। मतलब है कि जब दिन भर आप अपने पति पत्नी से, पति पत्नी से, बाल बच किसी से भी झगड़ा करते हो, खूब झगड़ा किया, मस्त धड़ाधड़, रात को सोने जाओ तो बोल दो कि देखो खूब झगड़ा किया है हम लोगों ने, मगर आप सोने जा रहे हो, आराम से सोएंगे, आ राम राम आ, तो आराम से सोएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अब झगड़ा खत्म, कल सुबह जब जागेंगे फिर से स्टार्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मित्रों, मगर रात्रि को सोने से पहले हमेशा झगड़ा को सलाह कर लिया करो, क्योंकि ना जाने उस रात आखिरी रात, उस रात आखिरी बात, उस रात आखिरी मुलाकात हो गई और एगो टपक गए सवेरे और झगड़ा से गई ले सूते, दन हैप्पी एंड खरू तो प्रॉब्लम, बहुत बड़का प्रॉब्लम आपको मित्रों। खुशी के लिए काम करोगे, खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेंगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी मित्रों, खुशी जरूर मिलेगी। और जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो, ध्यान करना, जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छे चीजें आपके जीवन में वापस आती है, हाँ वापस आती है, इसमें कोई संदेह नहीं, ये निश्चित बात है, ये प्रकृति के नियम है मित्रों, यही प्रकृति का नियम है। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति मित्रों, यही सच्ची संपत्ति है। हाँ, क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने की, ध्यान करना, क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने ये वाला द्वार है। मांगो नरक में जाए तो रोज झगड़ा करो ना, क्रोध करते रहो, बोलो मित्रों, क्रोध करने से, ध्यान करना, क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है, आप स्ट्रेस में चले जाते हैं और वो आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। कई बार आप अपने ही नुकसान कर बैठते हो और सोचते हो कि हम का कर बैठली है, तो हम दूसरों को दोष देते हैं मित्रों। दूसरों को दोष देने से पहले हमें सोच लेना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्या बोलने जा रहे हैं, व्हाट था एक्सैक्ट, क्यों कहे के हम ऐसे बाटी कनेक नित खवून से जैसे नॉर्मल रहल जाए प्यार प्रेम से, क्योंकि कल हम भी आप भी तो मरेंगे, तो वारों दी प्रॉब्लम हम ना समझ पाए हैं कि प्रॉब्लम हुआ काहे के मित्रों, काहे के है।

मित्रों, भगवान कहते हैं मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। आप बचते हो क्यों? आप धड़ाधड़ क्रोध करते हो मित्रों, कितना भी गुस्सा आए

चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से मित्रों, माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होती है। माफ करना और ना बोलना कि हम ना माफ करा मीने हो फरकीफ है, तब मरो लेके अगले जन्म में कहाँ जइयो का करियो पता ना है, भगवान जाने। तो माफ कर दो का हो जाए, तुम्हार कुछ थोड़ा लाश हो जाएगा है, आप जीत जाओगे है। तुम में कामियां भले ही हजारों हो है, गलतियां भले ही हजारों हो आप में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो मित्रों, खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर करने का हुनर यानी अच्छा रखते हो। जितना सुनिए, जितना इंतजार परमात्मा आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे मित्रों। जब भगवान आपको कुछ देना चाहता है ना, तो पहले इधर उधर सब बिखेर देंगे, फिसलवा इधर उधर फेंक देगा, कोई देखेगे तुम्हें वो सब उरी है तुम्हें वो क्या कहते हैं खदेलत है। जब आप घबराओगे नहीं, अच्छाई से रहोगे प्रेम से, तब धीरे धीरे भगवान आपको सब देने लगेंगे। तो आप सोचेंगे हैं ये कैसे, हम तो इसे ना मंगले, हम तो ये कमोना कर्म फिर भी हमके मिला था। सब भगवान की खेल है मित्रों। कोई समझ पाया है कि आप ही समझोगे है, नहीं समझ पाओगे मित्रों। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है मित्रों, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। और ना जैसे आप हैं, अच्छा आप नहीं आपके बगल वाले होंगे तो छोड़ो, आप नहीं तो आप सत्य की राह पे चलते हैं मित्रों। तो मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, कोसता रहता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। आपका भाग्य आपके हाथों में है मित्रों। गोरे में कहे गए हैं कि द रेहिसर फाइन तुकोम्स ऑफ यू फॉन्ग द लीफ दैट बेन यजेलफ, और ना कोई और। सत्य से मित्रों धन ध्यान का नाम का बोलत हैं, सत्य से कमाया धन हर प्रकार से सुख देता है, और छल कपट से कमाया धन दुख ही दुख देता है। आप तो जानते हैं, आप तो करते हैं ना छल कपट वगैरह, चोरी चपाटी फ्रॉड लूटमार, नहीं तो आप अच्छे इंसान हैं, तो आपको आपका कमाया हुआ धन सुख देंगे। और जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते मित्रों, तो रास्ता बदलिए, रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलते हैं, जड़ नहीं। तो आप क्यों सिद्धांत को बदलेंगे, रास्ता बदल लो, दूसरा तरीका से दूसरा काम ढूंढ लो है, उसमें क्या बात है मित्रों। तो गलत काम मत करिए, नगो दू लौलोसानी अंदर से प्रॉब्लम।

मित्रों, जब आप भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, हम आपन जीवन आपके हाथ में सौंप दे ली, तो उस वादा को पूरा करना भी चाहिए, ना बाद में दूसरों को गाली देने लगो, अपने खुद करने लगो। तो भगवान की कहा है, बोले कि भगवान तू हमारे लिए सब कर, खबरदार लिला उलाओ चीज ना बोला करो। मित्रों, किसी के संगत से आप ध्यान करना हम क्या बोलते हैं, किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। मित्रों, आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। और एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनके विशेषताओं से सीखता है। मगर आप नहीं, हम काहे ओकरे वाला ली, हम काहे उसे सब कुछ सीखी। एक मैन बेहतर दान है ऑफ दान हार यू लाओ। खोपड़ी ठीक ना है तो अच्छा चीज देखो तो उससे सीख लो, सीखो। उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, नहीं करो, नहीं तू ही बर्बाद होंगे। क्या होंगे? बर्बाद होंगे। देखो ना आज तक कहां पहुंच लो है? आपका बात नहीं, आपका बात हम ना बोलत हैं। अभी नाराज हुई है कि परदेशी बाबा हमके का बोलत है। ऊ जो तुम्हारे पीछे खड़ा है ओके हम बोलत हैं। मित्रों, और संबंध बड़ी बातें सुनिए, संबंध बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। अपने भौजी देवरनिया या कोई भी रिश्तेदारी को बड़का बात ना सुनाओ, तू धनवान है तो उनको बड़का बात बिहान गिर जाइयो है, रावण भी गिर गए ना, तो तू बचियो। आपका बात नहीं बोलत है, क्षमा आपका नहीं, किसी और के बात बोलत है। मित्रों, और यदि सब कुछ खो कर भी आप में कुछ करने की हिम्मत बाकी है, ध्यान करना, तो समझ लीजिए आपने कुछ खोया ही नहीं है। कर्म ही सबसे बड़ा धन है। मित्रों, कर्म करते रहो, करते रहो, कर्म ही सबसे बड़ा धन है। हाँ, और ना ही कुछ और, जैसे लोग बतलाते रहते हैं, कहानी का लोग आप लोग को सिखाते रहते हैं। मित्रों, खबरदार इन सब चीजों से बच के रहना, बच के रहना।

मित्रों, हम अनेक तरह की भजन गाते हैं, समझाने के लिए वो खुद भी समझते हैं, कोशिश करते हैं। मित्रों, परमात्मा कहते हैं कि ये उपदेश देते हुए कहते हैं भगवान, व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है। आप और मैं कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है, जिससे हमारा अगला जन्म या भविष्य बनेंगे, और बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता। कोई जरूर कर्म करो, अच्छा कर्म करते रहो, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना जो कर्म करते हो उसका परिणाम ना सोचो कि का मिली का ना मिली, वो छोड़ दो। उसके किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, कर्तव्यों का पालन करते रहो। कौन फल मिले या ना मिले, जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल मिली है। एगो पुराना कहावत, जो बोएंगे वही काटेंगे आप ना। आम के पेड़ बोयो तो कहाँ रोज के फूल मिली है, समझ लेना मित्रों। फिर भगवान कहते हैं कि कर्म का मार्ग दिखाते हुए कहते हैं भगवान कि अपने कर्म हमेशा समाज के प्रति और मानव कल्याण के प्रति केंद्रित करते हुए करो। अपने लिए भी करो, दूसरों के लिए भी करो मित्रों, और बाकी फल के चिंता मत करो। और उन सभी कर्मों को मुझे समर्पित करो, भगवान बोलत हैं कि हमको समर्पित कर दो सब जो करत बाटे आप। इस मार्ग को अपना कर मित्रों तो मुझे प्राप्त कर सकते हो, तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, भगवान बोलत है, हम नहीं बोलत हैं। तो अच्छा काम करो फिर भगवान के प्राप्त करो, और बुरा काम करो तो फिर राक्षस बनो ना, मेरे प्रेम के भागीदार बन सकते हो। भगवान बोले अच्छा कर्म करने से तुम मेरे प्रेम के भागीदार बनोगे, और का चाहिए आपको है, इससे अच्छा चीज ना और कौन सी मिलेगा आपको। मित्रों, हम तो कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं आप भी कोशिश करिए, भगवान जाने आगे का हुआ है। मित्रों, इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है मित्रों, कल वो किसी और का था, ध्यान करना, कल वो किसी और का था, परसों वो किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ जाओगे, कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हम सफर कोई नहीं है। अनुदे भगवान सबसे बड़ा मित्र है। खुशी आजादी पर निर्भर होती है मित्रों, आजादी, और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं, कितने मेहनती हैं, कितना मेहनत करे बाटे तू,

0: दीदी।
1: मित्रों, इस भजन के द्वारा मैंने आपसे बताया कि उमरिया बीती जाए, उमरिया चलत है, घड़ियां टिक टिक टिक टिक चलत है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये पता है कि आगे में एक बड़का होल है जो इंतजार करते है, वही में गिरेंगे। जितना खेत कमाई है सब यहीं रह जाएगा, सिर्फ एक ही छोटी सी जगह दुई मीटर लंबा हो या ताकत ब्रेत है और गहराई है, या तुम्हें आग में झोंक देंगे, बारबेक्यू कर देंगे, बस खलास। तो मित्रों, ये जो हमने आपसे बतलाए हैं इसे कुछ सीख लो, सीखो, हम भी सीखते हैं। हम बोलते हैं मैं, फिर भी हम सुनते हैं क्या बोलत बाटी, बाद में हम सुनत बाटी भी क्यों, बोलते समय में ध्यान न रहे कि क्या बोली, खोपड़ी में आवे बोल देवत हैं तो बाद में सुनत हैं, तो हम भी जीवन में उतारने की कोशिश करत हैं। तो मित्रों, आप भी जरूर कीजिए ना, जीवन में उतारिए। मैं बार बार यही कहता हूँ कि प्रभु आप मुझे मिलो या ना मिलो ये तो आपकी इच्छा है भगवान, मगर मुझे उनसे मिलवाते रहना जो आपसे मिल चुके हैं या बिल्कुल आपके करीब है। मित्रों, तो हम आपसे मिल करके बहुत खुश हैं। भगवान आपका कल्याण करे, खुशी से रहो, बुराई चल कपट किसी से ना करो, चोरी चपाटी ना करो, आपके सामने आएगा। मित्र, प्रेम से रहो, विश्वास के साथ रहो, भगवान पे भरोसा करो, कल्याण हो, कल्याण हो।

मित्रों, जो लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं, उनसे मेरा जी घबराता, क्योंकि उनके कहने और करने का कुछ ठिकाना नहीं है।

संसार की तरफ चलने वाले का कोई भी साथी नहीं होता, पर भगवान की तरफ चलने वाले के सब साथी हो जाते हैं।

भाइयों और बहनों, जहां साहस और परमात्मा साथ है, वहां कठिनाइयां व समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती है। यह मेरा और मेरी पत्नी राधा

अति सुंदर अति सुंदर हमको यहाँ से श्रवण कर ली है और कहते हैं कि सुबह की रोशनी में छुपी है नई आस, सुबह की रोशनी में छुपी है नई आस, हार घिर कर भी कभी ना होना उदास, जिंदगी एक जिंदगी के हर एक मोड़ पे है एक नई बात। ये तो बात सच है कि जिंदगी के हर मोड़ पर है एक नई बात, उस पर जरूर से गौर करें और चलते हैं

लता जी के आवास में साथ दे रहे थे उदित नारायण जी, सुने हमने ओ पालनहारे। सुबह की ठंडी हवा, सुबह की ठंडी हवा कुछ कह जाती है, अवश्य सुबह की ठंडी हवा कुछ कह जाती है। हर पत्ता खामोशी से मुस्कुराता है। खुदरत के हर रंग में छुपी है बात कोई, जो सिर्फ खामोशी में ही समझाई जाती है। अवश्य जो सिर्फ खामोशी में ही समझाई जाती है।

किशोर दा जी के आवास में फिल्म का नाम है छोटी बहू और ये फिल्म पिक्चराइज किया गया है मेघंतीन एनन सेफंतख में। ओस की बूंदे फूलों को भिगा रही है, ओस के बूंदे फूलों को भिगा रही है, ठंडे लहरें एक ताजगी जगा रही है। एक प्यारी सी सुबह आपको जगा रही है, सुबह की प्यारी रौनक तो देखो,

कितना अच्छी बात है कि रामा रामा राम के नाम ही रटते रहो तो उमरिया कितना आसान से बीत जाएगा, ये आप भी नहीं सोच सकते, ये मैं भी नहीं सोच सकते, पर ये हकीकत है। राम ही नाम बस अपने ही जुबान पे लेते आना बहुत आवश्यक थे। राम नाम राम नाम राम नाम राम राम कहिए, ना कोई खर्चा लगता है ना कोई रुपया लगता है, बस राम ही नाम कहते गुनगुनाते चलते जाना।

जय जय राम, जय जय श्री राम, जय जय हनुमान। सुंदर हनुमान चालीसा आपके लिए प्रस्तुत किया गया है और कहते हैं कि परमात्मा दोनों तरह से आजमाता है, परमात्मा दोनों तरह से आजमाता है, देकर भी और लेकर भी। सभी को सुप्रभात। सुप्रभात, जिंदगी का हर पल, जिंदगी का हर पल खास है। जी हाँ, जिंदगी

जी बम बम भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। क्या बात है, यहाँ से आपको ये सुबह शुरुआत करने से ऊर्जा लेकर और शुरुआत करना है मन की शांति प्राप्त करने के लिए। पावरफुल ये जीवन जो है और ये दिन भी रहे, रिश्ते वही श्रेष्ठ है मेरे दोस्त, रिश्ते वही श्रेष्ठ है जिसमें शब्द कम और विश्वास ज्यादा हो। जी हाँ, आपने सुने हैं कि रिश्ते वही श्रेष्ठ है जिसमें शब्द कम और विश्वास, जी विश्वास ज्यादा हो, अहंकार कम और प्रेम ज्यादा हो। मन की सोच सुंदर हो तो सारा संसार सुंदर है, बात भी सही है मेरे प्यारे प्रिय प्यारे भक्त प्राणियों कि मन की सोच सुंदर हो तो सारा संसार सुंदर है। और ये भी कहते हैं कि लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। सुनो एक बार फिर कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, पर बात ऐसा नहीं है, बात ऐसा नहीं है। लोग भाग्य लेकर आते हैं, आप और मैं, हम सब भाग्य लेकर आते हैं और कर्म लेकर और जाते हैं। हम भाग्य लेकर आते हैं और कर्म जो हम करते हैं वो कर्म हम लेकर जाते हैं।

వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. సుందర సా గణేష్ భజన యహాం సే శ్రవణ కి హే. పవర్ఫుల్ పవర్ఫుల్ భజన ఆప్కే లియే, తాకి ఆప్కా దిన్ అచ్చే సే ఔర్ ప్రేమ్ సే ముస్కాన్ సే శురువాత్ హువే. ये बात मैं आपसे बताना चाहती थी कि सुबह का हर एक पल, सुबह का हर एक पल का आशीर्वाद, हर एक पल हाँ भगवान का आशीर्वाद होता है. सुबह का हर एक पल भगवान का आशीर्वाद होता है मेरे दोस्त, मेरे प्यारे प्यारे सुनने वालों. हाँ भगवान का आशीर्वाद होता है, इसे हंसते हुए जिए. हाँ इसे हंसते हुए जिए और अपने दिन को शानदार बनाओ. क्योंकि मेरे दोस्तों दिल थोड़ा से छू जाता है ये बात कहने के लिए कि ऐसे कितने हमारे जीवित प्राणी हैं जो सुबह को फॉर वेलकम नहीं कर पाते हैं. आप ये सुबह देखे हैं, आप बहुत खुशकिस्मत वाले हैं. या न्यू हुय मोर्ख सुप्रभात, गुड मॉर्निंग. बस हंसते हुए चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल से इसे स्वागत करो. और कहते हैं कि ईश्वर देता है उसी को जो बांटना जानता है. हाँ ईश्वर देता है उसी को जो बांटना जानता है, फिर चाहे वो धन हो या खुशी.

भोलेनाथ भोलेनाथ मेरे भोलेनाथ, हर हर हर हर हर हर महादेव। हे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, सबके प्रभु से यही प्रार्थना है कि आपकी, हे मेरे ईश्वर, कि आपकी कृपा, आपके कृपा से एक नई सुबह देखने का सौभाग्य मिला है। हम सब कितने खुश नसीब हैं कि आपका आभार मेरे सभी सुनने वालों के सभी मित्र, सभी संबंधी खुशी रहे, स्वस्थ रहे, हम सब स्वस्थ रहे, हम सब खुशी रहे और उनकी दीर्घ आयु होवे। हम सब की दीर्घ आयु रहे, स्वस्थ रहे, संबंधी सभी जो है खुश रहे। ईश्वर आपकी, हाँ ईश्वर आपकी हम सब की हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे और सभी सुखी। सभी दुख जो है वो दूर होवे, यही प्रार्थना है ईश्वर से, यही प्रार्थना है भगवान से कि हम सबको सुख शांति प्राप्त कराएं।

अति सुंदर दिल को छू जाते हैं, तार तार जो है वो सब हिला देते हैं। इतनी सुंदर यहाँ से आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है ये सुंदर सुंदर सा भजन। मिटाने से मिटे नहीं ये भाग्य के लेख, मिटाने से मिटे नहीं ये भाग्य का रेखा। कर्म अच्छा तू करना, कर्म अच्छा तू करता चल, हाँ कर्म अच्छा तू करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। तो फिर ईश्वर की महिमा देख, दर्द ना होता तो खुशी की कीमत नहीं होती मेरे दोस्त। खूबसूरत सवेरा आपको हम सबको बधाई है। नई सुबह नई किरण नई आशा लेकर आई है, नई उम्मीदें नई रास्ता ये जहां एक दिन नहीं ये मज़ह ये पल एक दिन नहीं आपके सपनों को साकार, हाँ आपके सपनों का साकार करने एक और मौका मिला है मेरे दोस्त। आपका पल सुखद सुखद में सुंदर एवं खुशियों से भरा रहे। हम सबके पल जो है वो खुशी सुंदर एवं खुशियों से भरा रहे।

आपको ये दिन, ये पल, ये सुबह बहुत सारे बधाइयाँ हो। शुभ प्रभात आप सभी को। उदय उदय किसी का भी अचानक नहीं होता है। हाँ, उदय किसी का भी अचानक नहीं होता है। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है मेरे दोस्त। हाँ, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है। ऐसे ही मेहनत करने से भी हम धीरे धीरे भी आगे बढ़ते हैं। और हाँ, धीरे धीरे सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है, हाँ, धैर्य और तपस्या जिसमें है, वही संसार का प्रकाशित कर सकता है, जैसे कि आप। जी हाँ, आप में धैर्य है, आप में धैर्य है, आप में तपस्या है। यू हैव अ विल ओम दौर दखान ओम दूल दबरेकन दबेंट यू हेलमाल ऑफ द यूस्ट वेग एंड दार बाय हैव यू ओक द kracht van uw lieve Heer bij. En dan kunt u zelf zien hoe gelukkig u op den duur kunt zijn. En het enigste is doorzetten, gewoon doorgaan. In alle positieve dingen.

सुप्रभात मेरे दोस्तों, सुप्रभात मेरे प्यारे प्यारे भक्त प्राणियों। जीवन की हर सुबह एक नया अवसर है, जीवन की हर सुबह एक नया अवसर है, इसे अपनाओ। हाँ, इसे अपनाओ और अपनी खुशियों को बिखेर दो। हाँ।

Wij zijn allemaal gezegend, ja. En dan wensen wij u ook vanuit Van Hindustani Radio een gezegend dag. Nieuw begin. Nieuwe kansen. Nieuwe lach. Hasta wahi hai mere dost. Haan, hasta wahi hai. Jaise aap haste hai. Jo duniya se nahi. Balki apne aap se haar jata hai. Aapka aaj. Aaj. Aapka aaj. Hamesha. Khushhal aur sukhatmay rahe. Haan, aapka aaj. Aise na socho ki aaj, aaj. नहीं अभी कुछ पल के बाद भी आप कहोगे कि आज का दिन एक घंटा के बाद आप भी कहोगे आज का दिन रात में होगा तो भी कहेंगे आज के दिन आज की रात क्योंकि ये आज कभी जाता नहीं कल कभी आता नहीं हाँ कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं

और ये भी है कि आपका अस्तित्व जो है, आपका पर्सनालिटी जो है, वो आपके कर्म से है। हाँ, आपके कर्म से है। किसी की नज़रिया से नहीं, हाँ, किसी के देखने से, किसी के बोलने से नहीं, बल्कि आपका अस्तित्व जो है, आप जो है, वो आपके कर्म से है। जो आप है वो आप ही के कर्म से है। ये प्रोग्राम जो हम सब मिलके सजाए हैं और हम सब मिलके सुने हैं, देने सुनने के लिए इस वक्त के आपको दिल से धन्यवाद किया जाता है। यहाँ से स्वीकार कीजिए सेविका शांता की प्यार भरी नमस्कार और आगे सुनते ही रहना। अख्त ओ फर हालफ नहीं कहो चला है और आज भी श्री पंडित राजकुमार महातम जी 9 का वक्त जो विज्ञापन चलेगा उसके बाद श्री पंडित जी उपस्थित रहेगा हम सभी को सुंदर सा कथा सुनाने के लिए। तो आपके लिए यहाँ से एक सुंदर सा गीत लगा देती हूँ और उसके बाद सुनते रहना, मजे लेते रहना।

0: मेरे प्यारे सुनने वालों, हमारा पूज्य पंडित जी उपस्थित हो गया है, तो उनको हम हार्दिक से स्वागत कहती हूँ आपके तरफ से, मेरी तरफ से, फावन हिंदुस्तानी रेडियो के पूरे क्रू के तरफ से, ग्रुप के तरफ से श्री पंडित जी को हार्दिक से स्वागत है। पंडित जी, आपको हार्दिक से स्वागत मैं कहती हूँ।
1: धन्यवाद जी।
0: जी पंडित जी, आप आकाश में है पंडित जी।
1: ठीक। हरि ओम महादेवम नारायण परम ब्रह्मा नारायण परम तपाम नारायण परो देव सर नारायण सदाम ओम नीलम भुज श्यामल कुमलंगम सीता समारूपित्वाम भागम पाणु महासायके चारु चापम नमामि राम रघुवंश नाथम। हरि ओम नमः संभवाय च मयूभवाय च नमः शंकराय च सूत्राय च मोक्षुक स्वरूप विश्व को नमस्कार। संसार सुख देने वाले प्रभु को नमस्कार। आनंद देने वाले प्रभु को नमस्कार। मंगलमय ईश्वर को नमस्कार और अत्यंत स्वरूप और कल्याणकारक ईश्वर को हमारा बारंबार नमस्कार हो। सर्वप्रथम आकाशवाणी के सुनने वाले, जहां तक हमारा आवाज पहुंचे, आप सभी को जागृत हावी मेरा प्रणाम। राम राम या सीताराम पहुंचे, खास करके रेडियो फान को जो मालिक हैं, मैं उनके भूरी धन्यवाद दे रहा हूं जो समय प्रदान किया है धन प्रचार करने के लिए। हम आप अभी कितना ले रहे थे, जहां प्रसन्नता जी ने रेडियो फान को माध्यम कितने अच्छे ढंग से हम आपको सेवा कर रहे थे, मैं उनके भूरी धन्यवाद दे रहा हूं। अभी जाकर मानफर दर्शन के बारे में कितने अच्छे ढंग से दश में कह मैं उनके भूरी धन्यवाद दे रहा हूं। तो आकाशवाणी के सुनने वाले, अद्भुत के तरह आज भी भगवान करुणा कृपा हुआ आपके बीच में कुछ ना कुछ धर्म संदेश मैं पहुंचा सकूं ना। इस समय हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत इस समय सावन का महीना चल रहा। सावन का महीना जो है ना, इसमें भोलेनाथ शंकर बाबा को ज्यादा हिस्सा में पूजा पाठ प्रार्थना उपासना किया जा। अब यहाँ पर प्रश्न उठते हैं, क्यों सावन के महीना में हमेशा तो हम लोग भोलेनाथ शंकर बाबा की पूजा करते हैं, लेकिन खास करके सावन के महीना में क्यों? सावन का महीना, ये महीना में, ये मास में भोलेनाथ शंकर बाबा का विवाह हुआ था, तो उसी कारण सावन का महीना जो है, तो भोलेनाथ को हम वहां प्रार्थना करें या ध्यान में लाए तो बहुत शुभ माना गया है। चलो उस पर विचार किया जाए, भोलेनाथ क्या है, शंकर का मतलब क्या है? शंकर का मतलब है जो सब जीवों को रक्षक है, जो सब जीवों को रक्षा करते हैं, उसी के नाम है भोलेनाथ शंकर बाबा। लेकिन भोलेनाथ शंकर बाबा हर देवता से, उनको रास्ता अलग है। कैसे अलग है? आप देखो प्रभु राम के विवाह में कैसे बारात गए, और हमारे भोलेनाथ शंकर बाबा के विवाह में बराती जाते हैं, आप जानते हैं कि प्रेत भूत भी उनके साथ गए। भोलेनाथ शंकर बाबा किस पर बैठ के जाते हैं बारात में? बैल के ऊपर, जिसे बोलते हैं नंदी, बैल के ऊपर। इसका मतलब है बैल पर क्यों बैठते हैं, उसका अर्थ बैल जो है, जो बैल पर बैठते हैं वो जाकर के धर्म एक प्रतीक है, जो धर्म के रक्षक हैं, जो धर्म के रास्ता पर चलते हुए पर बैल पर बैठते हैं। तो भोलेनाथ शंकर बाबा के विवाह बैल पर बैठ के गए। हम उस पर ज्यादा न कहूंगा विवाह के बारे में, शंकर बाबा के बारे में कुछ अनेकों ग्रंथ द्वारा मैं आपके बीच में कुछ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो गाथा आप कई बार सुन चुके हैं आकाशवाणी के सुनने वालों। कहा गया है, व्यक्ति का वर्णन शिव जी करते हैं, अन्य का वर्णन श्री राम श्री कृष्ण करते हैं, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ विराजते हैं, परंतु वो किसी दिन लक्ष्मी के अधीन नहीं होते हैं। प्रकृति का तिरस्कार करने का जरूरत नहीं, परंतु प्रकृति का अधीन नहीं होना, जो प्रकृति के दास बनता है वो दुखी होता है। शिवजी महाराज तो ज्ञानी वैराग्य के स्वरूप है। शिवजी कहते हैं कि प्रकृति से दूर हो रहना। सती जी, आकाशवाणी के सुनने वाले सती जी को ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए सती जी ने शिव जी से कहा, महाराज किस दिन आप तो मेरे सामने देखते भी नहीं है। अब गौरा पार्वती माँ कहे भोलेनाथ शंकर बाबा से, आप तो देखो रातों दिन यहाँ वहाँ समाधि में रहे, हमारे और कभी देखते नहीं आप है। कौन बोलते? सती बोलते, किस दिन आप तो मेरे सामने देखते भी नहीं, और ये राजकुमार श्री के योग में रोते हुए जा रहे हैं। समग्र आकाशवाणी के सुनने वाले सती जी प्रभु राम जी से कहे हैं कि देखो कौन, सती जी भोलेनाथ शंकर बाबा से कहे, देखो जो राम है अपने स्त्री के योग में रोते फिरते हैं, वह आप मेरे कभी देखते नहीं है। तो शिव जी ने कहा, रोते जा रहे हैं, इससे क्या होता है? ये परमात्मा ही है। सती जी ने पूछा, ये परमात्मा किस प्रकार हो सकता है जो सर्वव्यापक है, क्या वही ये है? शिव जी ने कहा, हाँ जो सर्वव्यापक है ये वही है। सती जी ने पूछा, महाराज सर्वव्यापक परमात्मा का आप वंदना करते हो तो वो परमात्मा मेरे अंदर भी है या नहीं? शिव जी ने कहा, तुम्हारे अंदर भी है। सती जी ने पूछा, तो फिर मुझको कभी वंदना आप नहीं करते, मेरे देखते नहीं है? कौन बोलते हैं? सती जी बोले, नाथ शंकर बाबा कहते हैं। तो शिव जी ने कहा, सर्वव्यापक परमात्मा का वंदना मन से होता है। अब शंकर बाबा गौरा पार्वती माँ से कहते हैं, हमें अपने हृदय से मन से उनको ध्यान करना है। तुम आगे बढ़ते आकाशवाणी के सुनने वाले, तो सती जी ने शंकर बाबा से कहे, देखो वो कौन सा राम है? आपके वो परमात्मा है, लेकिन आप स्त्री के योग में रोते फिरते हैं, वो कहाँ के परमात्मा है? तो भोलेनाथ शंकर बाबा उन्हें समझाए, सती वो परमात्मा है, लेकिन उन्हें संदेह था, त्वाई फलाक तक था कौन। सती जी ने उन्हें विश्वास नहीं हुआ, उनके बहुत तरह समझाए कौन, बहुत तरह समझाए शंकर बाबा भोलेनाथ, लेकिन सती बात जो ना मानी, तो जागर करके भोलेनाथ शंकर बाबा देव का देव भंडारों को भंडार भरने वाले सती से कहे, अगर आप जो बात न मानो तो जाकर परीक्षा ले लो। तो क्या होते आकाशवाणी के सुनने वाले, सती ने कपटी रूप धारण किया। सती जी ने सीता को रूप धारण कर करके कहा गए, यहाँ पर प्रभु राम लक्ष्मण जो है, प्रभु राम वहां लीला कर रहा है, पेड़ से वृक्ष पूछे वृक्षराज हमारे सीते कहूं देखे आप। उस समय जा करके सती ने सीता को रूप धारण करके रोने लगा, हे राम कह कर करके वहां पर गए जहां पर प्रभु राम है। सती जी ने सोचा, मैं ये रूप धारण करूंगा तो राम दौड़ करके हमारे पास आएगा, लेकिन प्रभु राम तो घट घट में समा सब कुछ जाने वाले हैं। जहाँ पर रामायण में भी लिखा, आकाशवाणी के स्वले चौपाई आप जानते हैं, सिया राम सब जग जानू करू प्रणाम जुर जुग पानी। तो क्या होते हैं, सती जी ने सीता को रूप धारण करके जाते, लेकिन प्रभु राम जान बुझ करके दूसरा रास्ता जाते हैं। सती जी ने सोचा, मेरे देखा नहीं, फिर जाते हैं, फिर प्रभु राम जो है दूसरा रास्ता धारण कर लेते हैं, लेकिन सती जी ने जानबूझ करके उनके नजदीक गए कौरूप धारण करके, सीता को रूप धारण कर करके। तो वहां पर प्रभु राम क्या बोलते हैं आकाशवाणी के सुनने वाले, प्रभु राम क्या बोलते हैं सती के, मां मां कहां प्रभु है, शंकर बाबा कहां है, और कहां आप अकेले स्त्री हो करके रूप धारण कर करके और यह जंगल में अकेले घूमते, ये तो हमारे स्त्री नारी के धर्म नहीं है। कौन प्रभु राम मां शब्द प्रयोग किया, किसके, सती के मां शब्द प्रयोग किया। अब वहां पर सती जो है आकाशवाणी के एकदम लज्जित हो जाते हैं। उसके पश्चात सती जो घूम करके वहां से प्रसन्न होते हैं, घर को जाते जहां पर भोलेनाथ शंकर बाबा, लेकिन क्या होते हैं चारों ओर क्या देखते हैं, प्रभु राम लक्ष्मण और सीता को देखते सती चारों ओर, और आकाश से आवाज निकलते हैं। और जिस समय चारों ओर देखते हैं प्रभु राम को देखते लक्ष्मण को सीते के, अब उनके कान में आवाज आते हैं, तो वहां पर जा करके सती नीचे गिर जाते, फिर खड़ा होते हैं। कहां पर जाते हैं, भोलेनाथ शंकर बाबा के पास जाते सती। तो वहां पर जा कर करके भोलेनाथ देव का दे जो भंडारों को भंडार भरने वाले भोलेनाथ, सती से कहे प्रिय प्रिय आप दर्शन कर चुका। तो वहां पर सती जी ने जा करके भोलेनाथ शंकर बाबा से कहे आप ही तरह मैंने दर्शन किया। सती फल खलूख, सती जाकर असत्य क्या झूठ बोले किनसे, भोलेनाथ शंकर बाबा से कहे तो आप ही की तरह मैंने जा करके उनके प्रणाम करके आ रहा हूं। तो वहां पर भोलेनाथ शंकर बाबा जो है बैठ करके अपना नेत्र जो बंद किए, नेत्र बंद करके विचार करते हैं। तो भोलेनाथ शंकर बाबा देखते हैं कि सती ने सीता को रूप धारण कर करके जहाँ पर प्रभु राम और लक्ष्मण है वहां पर गए थे, और प्रभु राम सती को मां शब्द कह करके उनके पुकारे थे। ये देख करके मतलब ये वहां पर जब विचार किया भोलेनाथ शंकर बाबा, तो वहां पर सती मां को मां शब्द प्रयोग किया, तो जा करके भोलेनाथ शंकर बाबा ने विचार किया इनके माँ कहा तो इनके साथ मैं कैसे रह सकूंगा, ये तो माँ कह दिया तो इनके साथ मैं न रह सकूंगा। तो आकाशवाणी के सुनने वाले प्रभु राम जो है, यानी कौन प्रभु राम, तो घट घट में क्षमा सब कुछ जानने वाले हैं। शंकर बाबा जो बैठ के ध्यान करते किन्हें, प्रभु राम को, और प्रभु राम ध्यान करते शंकर बाबा को, तो वहां पर निर्णय उनके निर्णय लेना चाहिए कन्हें शंकर बाबा के मुतन बसे संग नहीं मैं, कि हम सती के साथ रहूंगा कि इनके त्यागूंगा। और भोलेनाथ शंकर बाबा जो सती को बहुत प्रिय था, कहे प्यार करो किस तरह, प्यार करो भोलेनाथ कि कृष्ण भगवान, कहा शास्त्र कहे है प्यार करो तो भोलेनाथ शंकर बाबा, अगर सतीनाथ उनके लिए कुछ नहीं है और कृष्ण भगवान को राधा ना है तो उनके रूप में आ जाते हैं उनके पास। तो वहां पर जाकर के धर्म के निर्णय लेना है किन्हें, शंकर बाबा के। तो शंकर बाबा जाकर के आकाशवाणी के सुनने वाले धर्म का रास्ता लेके चल पड़ा। इस पे ख्याल करना है, कभी काल हमें वो आपको बस से कुछ लेना, अरे भैया तो पलवार मान छोड़ दिया जाए, लेकिन सत्य जो है आकाशवाणी के सर जो सत्य ही हमारा धर्म है। तो प्रभु राम ने धर्मों को वहां पर निर्णय लिया, जाकर समाधि में बैठ करके वहां नेत्र बंद कर लिया, अपना ध्यान में चल गया, सती को त्याग दिया। देवी देवता आकाश से पुष्प के फूल बरसाने लगा, धन्य है भोलेनाथ शंकर बाबा कि जा करके धर्म का रास्ता लिए है, कौन भोलेनाथ शंकर बाबा। तो आकाशवाणी के सुनने वाले ही वाणी द्वारा अपना पोर्शन विराम करने जा रहा हूँ। हरि ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदु भाग्भरोम शांति शांति शांति हरि ओम।

यहाँ से हमने श्रवण की है पंडित जी के मुखारविंद से सुंदर सा कथा, जो अपना मूल्य वक्त निकाल कर और आए हैं हम सबकी सेवा करने के लिए, और बहुत प्यार के साथ हमको सुंदर कथा सुनाए। हम पंडित जी को दिल से धन्यवाद कह रही हूँ। एक शुभमय एक मंगलमय दिवस आपको भी पेश हो रहा है। पंडित जी आपको धन्यवाद।

जाती, बस मोहब्बत हो जाता है। और मोहब्बत जो अच्छे से जो बसर करे, अच्छे से गुजार ले साथ में, तो कितना आनंद आता है ना। तो इसे समझ बूझ कर साथ में और साथ गुजारें।

ये तो बयां कर दी से कि ये भी प्यार किया है, मैं सोच रही हूँ आप भी प्यार करे हो, क्योंकि हम सब प्यार से तो उत्पन्न हुए हैं। तो सभी को प्यार के ये दिन बधाई हो, सभी के दिलों में प्यार ही बढ़ते जाए। ये सुंदर सा गीत ये कलेक्शन अलका याग्निक जी के आवाज़ में साथ दे रहे थे उदित नारायण और सोनू निगम जी और कुमार शानू जी।

जी सुनने वाले हो मेरे सनम, हो मेरे सनम, यहाँ से हम के सुनाए मुख्तार शाह, मुख्तार का शाह के साथ दे रहे थे ज्योति क्रिश्चियन।

0: क्या खूब फरमाए हैं ये तीन नौजवान नौ मुख्तार शाह जी के साथ दो अन्य व्यक्ति ने जो खूबसूरत से यहाँ अपना कला हमको अपना कला सुनाई है।
1: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, और तुम नहीं होती तो मेरे पास पैसा होता। ये तो मजाक की बात हो, जो टेलीविजन पे डायलॉग है वो वाले पूरे डायलॉग और फिर ये गाना। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाओं में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंज गम की सियाही जो दिल पे छाई है तेरे नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं, गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह न मंजिल न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी, इन्हीं अंधेरों

शाह से हमने यहाँ से श्रवण की है मेरे प्यारे प्यारे सुनने वालों। हर एक वक्त हर वक्त आपका एक नई सुबह की तरह नई किरण नई आशा नई उम्मीद नए रास्ता इन सब के साथ आपको बहुत सारे प्यार मिले। आप सुन रहे फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।

क्या भूल पाएंगे। यह सुंदर सा गीत आपको एक बार फिर सुना दी है मुख्तार शाह जी ने। जिंदगी जीने का मकसद, जी हाँ, जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, खुद पर विश्वास होना चाहिए। जिंदगी में खुशी कभी कम नहीं होगा, बस खुशियों मनाने का अंदाज बस होना चाहिए।

क्या खूब फरमाए हैं मुख्तार मुख्तार शाह जी ने और प्रियंका प्रियंका मित्रा। और ये फिल्म रफ्तार से निकाला गया है जैसे हमने आपको बताई है। हर एक की सुनो, हर एक से सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानते, लेकिन हर एक कुछ न कुछ ज़रूर जानता है।

आपको सूरीनाम जाना है, गाड़ी हीर करना है, तो आपको जाना पड़ेगा मखेंता वेग 259 बाय ऑटो फॉर बिड्रेव अमालिया. सेर जुइनिगे ऑटो सोअल्स टोयोटा प्रीमियो, टोयोटा रक्टिस, टोयोटा फिट्स. Contact in Suriname, de heer Parkas Gokul, op telefoonnummer 00597-8757-9339. Contact in Nederland 06-57-418-8873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00-597-8757-939. In Nederland 06-574-188-73. Amalia, autoverhuurbedrijf in Suriname.

चिनीच कला न जाने जांच सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार प्यार भरी अदाम सत श्री अकाल। जोनी नंबर वन है हमारा नाम। आज के देश विदेश के समाचार को सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम। आज भी आप लोग को हम ले चलेंगे सूरीनाम से लेकर और देश की ओर, और हम चलते हैं सबसे पहले अपना सूरीनाम के समाचार की ओर, उसके बाद हम ले चलेंगे और नोख अंदर लंदन से। अब देखो भैया सूरीनाम में आप लोग जानो बड़ी गर्मी है वहाँ पर, इन हॉलैंड देश में भी गर्मी है यारो, सूरीनाम देश में तो और ज़्यादा गर्मी है। लोग जा रहे हैं यहाँ वहाँ घूमने को, रिक्रियासी ओर के ओर भी लोग जाते हैं, यानी कि ठंडा खोज रहे हैं, पानी खोज रहे हैं, घूमने को खोज रहे हैं। तो ऐसे बातचीत हो रहा एक रिक्रियासी ओर थे भैया, वहाँ पर एक देर तक यार के और घूमने को गया है, तो वहाँ बताए गए सूरीनाम देश में, तो वहाँ पर जो गया है घूमने को अपने दोस्तों के साथ, तो वहाँ से ये औरत जो है देर तक यार के बोले हम अंगेला घरे जाए। हाँ तो घरे जाने पर भैया और ना गैल है अपन जेकर संगे गैल है ओकर संगे ना गैल है कि हम ओकर संगे लौट के आई, और ओकर बोले है जो ओकर ए फ्रिंदे ने जो रहा जेकर से हंसे कांप रहा बोले ये औरत चला गया। तो बताई गई है सामन में तो फ्रिंदेन एंड फ्रिंड फॉन द फ्रिंदेन एक और क्रियासी और बेगल वॉज फॉर फर्तीर ओपर खीफस मोमेंट बोले हैगा मोमेंट फॉर ट्रो खास खास का सुंदर हार दारफान ऑफ द हुक्त स्टेलन बोले जे कसंगे गए लहा बिना बतावे उसे भी चल गए से बेल द फॉर फॉक मेरद केरे में थार फ्रिंदेन मार सुंदर हर खवेंस ते रिजल्टात। तो अप फ्रिंदेन की बेल करे है और उस सब ना उठावे तरवा एगो फ्रिंदेन के संगे गए लहा उप फ्रिंद के संगे भी गए लहा ओम द स्लाख्त ओफर बोले है ई मांगत्रा घरे जाए। तो बोले उतरे में बोले कि एगो आदमी एक लिफ्ट आनबीत करी से टाइनस द रेड सो द सिचुएशन एक्ट सेन का एक्सकलीर एके बोले तो के उतार दे तोर फ्रेंडेन तो के छोड़ के चल गए हम तो के उतार देबे। और बोले हैगा फोक स्लाख्त ओफर स्लाख्त ओफर रा दर तक यार के बोले हैगा दूर द बस्तूर दर बोले जे कसेंगे एक मिला और रहा बेहार खस्तलाख्स दिल बतास्त बोले हुआ छुए लगल तू से ऐसे दार इन तीख फरसेत सौ से स्टीफक बेर कील से इन फास्ट कहूदन। और दूसर कोई लिफ्ट के संगे जात रहा दुई मर्दाना ओ तो मेरा एक लिफ्ट दे से। तो बोले एक के छुई मुई कर एक शुरू कई से ये बोले हमें ना कर तो उकर गटई से मंदराई करी से भैया दबाई से। और बोले तेज से रेट वेस्ट है स्लाग तो फर कॉन्टैक्ट लेखन में तो बकेंदे दी बे द सूरीनाम से पुलिस सी वेर एक्साम इस। और बोले लिफ्ट तो बोले बेल करी सेगा एक मिला के जे किसी पहाई से मुई कॉन्टैक्ट रहा। और बोले सही स्टूडेंट ब्रेक वारीन zij de situatie kenbaar maakte. Of bole de informatie werd daardoor doorgegeven. Zij bahike. Ego politieteam bole ikke achtervolg krise. Of bole hega betreft de voertuig. Ego Kennedy weg mee. Tot stilstand te brengen. De twee inzittenden werden aangehouden. Of Sandrijke politiebureau mee liggen. Betaaien ego Toyota Runix raha. Is in beslag genomen. Voor verder onderzoek. Na afstemming met de Surinaamse OM worden twee natuurlijk hoe ze heb je sipahi pakken ke lege hai bhaiya te jab koi ke sange jaiyo ghume to use moi se asprak karke jaiyo nahi na jaiyo so mar idhar udhar ghume bhai ab de tor friendin aur ok friend to ke chhod ke chal gaye ab tu bachle akel ab dono kahan gaye le bhai koi pata na hai ab to ke farfur na hai laut ke aave ke dan krai ti det so dingches mense ab dekhe clock
omgebouwd tot automatische vuurwapen. Suriname kebaat he, roadblock to jane dampe. Sapsipahi loon gari rukai rukai controle kere he. Te doei go admi ke saban pakdi se bhaiya. Te bole hega rehu bijstand. Bole hega doei admi ke pakdi se. Politie actie pe. Te bole bataye gaye he. In een van de zaken. Sipahiya bole klok bhaiya. Ukali kaunchi he klok. Die volgens het onderzoek zodanig was aangepast. Ki i klok nyora bhaiya wapen automatische vuurwapen. Ze van oké banayla. Ima ego 46 jaar ke admi ke pakdi se. Tijdens een mini roadblock op de weg naar Vita Gronme. Bole Vita Gronme ze van huwa ego mini actie kalle raha. Jon tibiti sula ja hai. Aw bole hai ga hai reed antiyuta prado. Otowa raha tiuta prado raha. Aw bole jant raha. Bole bij de controle voertuig. Bole jema drugs milele bhaiya. Vermoedelijk hash milele hai. Aw bole ema ego scouder tas milele hai. Jaha pe ego 5 met 7 skerpe patronen milele hai. Chogo millimeter ke layo milele bhaiya. Op die zaakke onderzoek bij hebben 20 scherpe 9 mm patronen aangetroffen. Op de Carolina Creek kanti ik heb jatraha is op overgewapende bedreiging op de recreatieoord Carolina Creek met een man zou daar meerdere personen met een vuurwapen hebben bedreigd en vervolgens zijn weggereden. Op de bedreiging kan het ook het is van daar ik heb gekregen ja ik er maar niet mee. Tjota Hilux raakt klem en hield hem aan. Bolle hega, de Hilux werd een klokpistool gevonden. Voordat vuurwapen bleek wel een geldige vuurwapenmachtiging te zijn afgegeven. Maar desondanks werd het wapen in beslag van onderzoek genomen. Ook deze verdachten zijn in verzekering gesteld. Tja, oké, vergunning rajonta. Jabberjes agilagel he, tulunjano he. Ornami bope, huape saban doti jarawe he. Fel jarawe he. Aur itra barka agilagel bhaiya ki 10 ghanta saban u agia huape. Butai se, want de dhua tu jane bara dur dur chal ja he. Fel store plaatsen ornami bome. Brandteer hua घंटन बेचक रहा भैया 10 तारीख अगस्तस के बाद है और बोलेगा मैं मन एंड मकसबन अगिया ऑन द कंट्रोलर रखी से 1 बजे वारन द हेल्प टीम से gezamenlijk nog pizza met de bluswerkzaamheden mensen और बताए द विंड daarmee en de herontsteking zorgen बहुत आगे रहा हियां बुतावे तो हुआ आगे लग जाए और हियां लगावे बुतावे तो अंते आगे लग जाता रहा हमारा जनता ये सब बात है सुरीनाम के और नामी भू में के बात है हमारा जनता एक 18 बरिस के लौंडा भैया 18 बरिस के लौंडा 8 तारीख के अगस्तस के मेर खनु मोकर नाबा देखी भाई रमिया के देखी रहा वो किसी पाही पकड़ी से 14 बरिस के लड़की के बोले हैगा 14 बरिस के लड़की के बारे में मिंदर यारख लड़की से ओके सेक्सुएल मिसब्रुक कर रहा और बताए गए है द फरदख्त से फरक्लार द सिपाही में बोली से कि रात के दिसेल्फ द रात के वोनिंग फन हर ओम die naast haar woont had begeven op zoek naar een oplader voor haar mobiele telefoon. Echter trof zij hem niet thuis aan en werd zij te woord gestaan door diens jongere broer die in de omgeving bekend staat als Anna Dicky. बोले गए रा ऑपरेटर खोजे टेलीफोन के रात के और बताए गए हैगा एको बपाल मोमेंट बोले हैगा उ देखिस एको कमाड़ी खुलल है फन वोनिंग ऑफ स्लॉट वारना है हार ना ने स्लैब कामर ट्रक ओके खींच लेके कमरा में छौड़िया के 14 बरिस के ऑन द हेयर हाल द verzoeken om haar met rust te laten heeft de verdachte haar onder dwang seksueel misbruik. Na de daad hield hij haar voor om met niemand over voorval te praten waarna zij de woning verliet. Obbele de slachtoffer begaf zich direct naar een neef
aan wie zij vertelde wat haar was overkomen. De neef stelde vervolgens zijn moeder hiervan, Armai Jijke, aan giftiger is zij van het meisje telefonisch op de hoogte bracht op een lesipahi atarbes kolondake. Op sipahi Jijke ook een pakkerke banker is zij voor seksuele misbruik van de 14-jarige meisje Hamari Janta. Ek aadmi bhaiya, ek aadmi bhag raha jahal se. Ye baat ho raha hai, ye hai ga. Okar naam ba bhaiya Ivan Pamina. Ivan Pamina bhag raha. Aur ye bhag raha jahal se. Ek sipir le gaya raha kaam karwawe bhaiya, sipir le gaya raha hai ke kaam karwawe. Grote kombe weg met schoonmaak ke kaam karwawe. To jane jahliyan ke saban le ja hai kaam karwawe. To ee kaam karte me palmantayin ke biche me. Aur ee pel bhagalla bhaiya algo bare khrot alarm bhail hai. Sipahi non sab koi daural yaramiya ke khoje ke. Aur bole fardakht di self de mena ke saban pakdi se ko adres pe. Jekan namba saliyo weg pe Latour me. Obele de verwachte probeerde zich zijn aanhouding te onttrekken, maar werd door de kordaal optreden opnieuw aangehouden. Bhage manga trapinse ikke pakalise bhaiyai bahut din ki jhal paai raha, omdat i roof kalera bhaiya met geweld. To ab to nikar ke ek ghanta ke to bhagle baate. Maar 2 ghanta baad to kisi paai phin pakalise ta kaun faida hai? Kaun faida hai to ke bhage ke bhaiya want to direct pakrai gel am jai bhaiya Suriname ki aur jahan chikuniya ki chikungunya ke bare mein yahan pe charcha hai chikuni duniya Suriname mein bahut dheda bhaiya bari lok ke holander jo vakansi se gail raha sab ke kaate raha chikungunya ab yahan batave chikungunya lik langer epinimit an 80 ATV-nist hega, BOG bole hega, bole roep op alert te blijven, bhai chikungunya ke bare mein. Suriname ke BOG bole he, epidemistische fase van chikungunya, het aantal besmetting, jo nog geile laboratorium mein hua bevestig kari se, als gevallen die op basis van symptomen zijn vastgesteld, is duidelijk afgenomen. De ziekte circuleert nog wel in het land, maar bole kamti bhaile, bole da zegt de Stefani Chuk Alam. Bole de afname bekend volgens de BOG niet dat de preventiesmaatregelen kunnen worden losgelaten, maar bole chintana kario, maar bole hai chiyua ke bare me, bole jahan pani hai, wahan chikungunya hai, mosquito hai bhaiya Suriname des me, bole sabke spuiti kare khason thai sorakh ke, bole jahan pani hai rukal hai, bole huwa anda dewe huwe se uka larf se, aur bole huwe hai overleven en later opnieuw voor een toename, ego mosquito populatie hai. BOG vraagt extra aandacht voor planten, bakken, wazen, dieren en waterbakken en wateropslag. Aur bole wahan par chikungunya hai hamare janta. Aapko hum bata dete hai chikungunya bole kamti hai ma bole hai abe bhai okar bare mein janta log ke chahi ho alert alert rahe ki aap log jano hai Syria ke baati hum jaye tari Syria mein wahan pe bhaiya dictator raha Bashar al-Assad in zijn thuisland Syrië mein 2024 mein o pel bhagale deswa chhod ke Rusland mein hamar janta aur Rusland mein Syrië ke dictator Assad wahan pe lukan hai ha woh dusar koi Syria le le se offer family Assad bole dasan baris se Syria control karat raha tuno kar bare mein jano hai hamare janta तो बताए गए हैं अने सीरिया के बारे में दमास्कस में और बोले 2024 में भाग के गले रूसलांड में लुकान है और यहां बताए गए हैं ओके सीरिया में सबन तैर दूत फॉर और डील करी से वो चाहे सीरिया में लुकान रूसलांड में लुकान है मां सीरिया से देखता आजाद बे फर्स्टेक तैर दूत फॉर और डील है ओके सबन सीरिया में फॉर और डील करी से अने दोस्त्राफ के हमारी जनता और
हम जाई है और आगे भैया बुधवार के भैया मूसदाख के 12 तारीख के बोलेगो मूसदाख के हेतप प्लान है चार प्रोविंसी नीदरलैंड में चार प्रोविंसी में हेतप प्लान थे जैसे लिम्बर्ग भाई नोर ब्राबान भाई सेल्डरलैंड भाई ना ओवर एसल में बोले बहुत जबर गरम है एरिफीएम बोले है फन क्राफ्ट है डोंडरडाग वोल्कस द प्रोविंसी और बताए गए है दोस्तों 24 ग्राडे तो 21 ग्राडे है तो हम बोली बताए नहीं भैया आप लोग जान रहे हो ये गर्मी के मौसम है यहाँ नीदरलैंड की बातचीत हो रहा है हमारे दोस्तों बेल्ख के ओर जाल भैया हुआ बारबेक्यू हो गए बेल्जियम में बोले बेल्जियम में भैया वो कैंपिंग है और बोले बारबेक्यू में बोले फरखिफ्तक भाई ले दो बारबेक्यू इनसे 10 37 तक यार है एगो बेल्ग के आदमी सनिचर के इस ओमकोमन इन सेंट टेंट ऑफ एट फेस्टिवल कैंपिंग इन बेल्जियम हुगस्ट्राटन में और बताई गई है सनिचर के बोवेस्टलोसेवन ओके पाइस एगो कैंपिंग है अंटेलियंस फेस्ट हुआ पे भी रहा फोकस ऑमस्टैंडर्ड हैड द मान द बारबेक्यू इन सेंट टेंट aangestoken tegen de kou De hulpdiensten werden direct ingeschakeld. En we zo markt hebben ook gelegen koolstof, monoxidevergiftiging waren mee. Dus de ventileer nakker en hoe ja, toch ook cholera, garam hoe ik had in, toch je iets wel heel. Janneke, België mee, door barbecue, ik giet kieuw hem tjala jij.

और दोस्तों हम अपना समाचार को लेकर आगे को बढ़ते हैं कि हमसे शर्म और क्या पर्दा। दोस्तों हम चलते हैं सेंट्रल बैंक के और सूरीनाम के। दो हफ्ता हो गया आप लोग जाने को, एक नाम है सूरीनाम में जिसका नाम बा जिम बोसाइट। जिम बोसाइट भैया इसी में अक्टूबर प्रोग्राम आयोजित रहा और हूँ आप बोले लगल है गा खसप्रेक करे से ओफर कसर शेरफ फन सूरीनाम ओके बोले कॉमर्शियल बैंकर बेटर सेंट्रल बैंक फन सूरीनाम बोले है गो पेस ब्रेक में बोले फॉर्मल का गवर्नर रहा सेंट्रल बैंक फन सूरीनाम बोले है गा रॉबर्ट फन ट्रिक बोले यूरिडिस वर्ड बाई खस्तान दो एडवोकेट इवान कन्हाई। अब बोले है कन्हाई तो जाने हैं बहुतस के भी रहा और अपी ट्रिक के भी है। ट्रिक जो हम लोग के सेंट्रल बैंक के एस गवर्नर रहा बन है कई बार इससे हम लोग के बैंक रोफ करी से भैया एकर बारे में। और बोले हैगा इन द प्रेस ब्रेक में बोली सेगा फुरमालक गवर्नर रॉबर्ट ट्रिक के बारे में जेकर अर्फोकार है इवन कन्हाई। बोले है बोली से कन्हाई इस ए नीट एज में ऑफ फटिंग फन बोसाई जब सेंट्रल बैंक सुंदर तुस्तेंग फन कॉमर्शियल बैंकन खबरों की बात फन द बे हर आनखाउदन कास रिजर्व्स बोले कन्हई इंच ना है सेंट्रल बैंक बोले ही एनलक एरकेन करी से कि बोले जितना तखुदा रहा बैंकों में वारन आनखवेन एंड हीव में द बत्रोकन बैंकन रीगलिंग ट्रोफन फॉर द तुरक बतालिंग। Sindsdien zijn de tegoeden van de commerciële banken bij de centrale bank aanzienlijk verminderd. Kan hij bestrijden kritiek die er over de econoom en politici is geuit en stel de centrale bank wel dergelijk bevoegd was om de kasreserves te gebruiken. Dus doe ze ook banken, wat herraad de IRMIA gebruiken leren. En boel hebben ook een subcentrale banken, commerciële banken, subke terugbreken. Toen ik er maar mee econoom. बोसाई और बोली से एने और कन्हई भैया चटकल है चन्हई बोले इसे बतिया ना हैगा बोले बंकुआ के रेख्त रहा पैसों जोन लेनी करे पाए रहा कमर्शियल बंकों से ओके खबरों करे के। अब बोले धीरे धीरे बोले कि सब क्यों को चाहिए भरे के। तो हमारी जनता अब देखो हम जाइए दरी बैतलांड की ओर थाईलैंड स्कॉट न्यूवा वापन फरक्यूनियन op om schoolskutters aan. School met dat woord bij de bij de tijd van de premier gegaan. Hoe bolle gegaan nawa wapenvergunning in het land nadegen na de toedelijke geschiet incident bij de school mee. Jahan 8 mila merge hego 14 bariske londa aur jai ke dagi sega en later hoe apareke zelfmoord pleeg kardi sega. बोले आठ मेंशन को आमन ओमेट लीव नदर 14 यार के जो दागेर अप्रैल सेल्फ मोड करी से थाईलैंड नस्कातिंग मेर नान 10 मिलियन बुर्खर से मेट अन फिर वापन हुआ पे अदमी लोग के फिर वापन है 10 मिलियन अदमी के दैट कम देर ऑफ ऑनकफेर 15 वापन पर 100 मेंशन। बोले द मिनिस्टर अंडरवेज इव न्यू फेलिस मात्रिकन ऑफ स्कूल और थाईलैंड में भैया सब कोई वैकेंसी हुआ जा है जिस वहाँ पे 15 आदमी 100 आदमी के पास में वापन है का जिसके फर्क नहीं है मैंने से तो ये फर्क नहीं के बारे में अभी बागे हैगा बंद करे। लिबानोन के जाए भैया जहाँ पे हिजबुल्ला हुआ पे रिगेरी करे है बैरूत में और इसराइल जाए ये सब दागे है। बैरूत बोले हैगा लिबानी से पार्लियामेंट वहाँ पे भी बा चाहे लिबानोन के हुआ है बाकी हुआ के बास जो नहीं का हिजबुल्ला है भैया द टेरर ग्रुप वो एक मारे दागे हैगा इसराइल का बोले हिजबुल्ला के लिबानोन में। तो बोले हैगा अब एगो वेथ है हुआ पे लिबानोन में बोले अन वेथ हुआ बा आन को वार में द दूसर वेर अफ्खाफ है इस इस्ते लैंड इन मिडल ईस्टर्न दैट डिड इन अ वेथ फरअंकर्ड उधर मिडल ईस्टर्न में दूसर रहा भैया मैं बोले हैगा लिबानोन दूसर फॉर निकारे है 2005 4 में दो स्ट्राफ हुआ पे आल नीत में तुखा पास इन इट लांड मार द स्ट्राफ वर्सांट वेल द स्ट्राफ वेर फरफंगन दो लीफस लांगे गफार लीफस लांगे स्ट्राफ। हम लोग के सूरीनाम में भी दो स्ट्राफ है भैया बके कोई ना हम देर करे हैं यूसीसी बोले है आदेल नसर वर्थ लिबालोन बोले है बोले रीक्यो असर खात उम्र बस्कैन में फन मेंशन रेक्टन दो दो स्ट्राफ अफ्तस्काफन लिबालोन बोले हैगा कि अफ्तस्काफ करेगा यानी कि दो स्ट्राफ मेंशन।
आगे खूम अपन समाचार लेके जाए भैया। यहाँ पे बताए गए है ब्रांस्ट ऑफ तेल के बारे में भैया, तेल के बारे में बोली ला ब्रांस्ट ऑफ फ्राइसन ब्लाइफन फुरूप उन खवैसे सिरना में तेलवा भी से चढ़े भैया। यहाँ बलावे हैगा बोले रखेरिंग बोले बसलोतक करीसेगा दिफेर से मास काप लग खुरुपेरिंग बोले है देव ने तीव वसलेत पर खोनो में कि बोले ओवर हेड आल दैट नीड लॉस लाते फन हैडिक प्राइस काप बोले तेलवा जितना रहा उतरे चाहेगा बोले ना चाहे चढ़ावे के बोले फिनाशियल दर्फिंग 350 मिलियन SED per maand, bolle hega volgende berekening van het ministerie Financiën, zal dit bedrag opgelopen worden tot 3 miljard als de huidige regeling wordt voorgezet. Bolle otraatje hard jij, want abe Suriname subsidie wehe, directeur Financiën ke bolle hega oliemaatschappijen inmiddels op de hoogte zijn gesteld van dit besluit. To Suriname ke tel ke bare mein, hamare jatta futsal pakket ke or hem jail bhaiya. सौदा पानी के ओर के भी बारे में जाएला ड्रिंक वाटर लीफ खमीस कब शर्मा करी फिर में तू जाने है जो हुआ पे मछरिया नचरिया से फरके तक भैल है हुआ पे जाए के पक्के शर्मा का कंती और बेनलाद में बटा है पानी बटा है हमारे जनता इससे बातचीत है। तो तेल के बारे में आप लोग को हम बता देते हैं कैसे बात है दोबारा तय के बारे में बहुत बड़का में लिखी से हमारी जनता अक्तुएल प्रोग्रामा भी है और अक्तुएल प्रोग्रामा के बारे में आप लोग को हम जरूर बताएंगे कि रेम ट्वी होंद ट्वी डाइसन ट्वी होंद फेफ्ट स्लाख ऑफर्स बा 57 फरकेर दो द 2026 में भैया उतरा आदमी मर गए 57 आदमी सिरनाम में मर गए खाली अरेडिंग से और जो चोटान हैगा तो 2259 पर्सोनन फरकेस ऑनगोलिक से तो लो तो बड़ा जोर हुआ सब चलावे भैया ओ मां बतावे 57 गो आदमी मरल है और मां 18 गो ब्रोंफिस्टर मरल है 9 गो ओवर बस्टूडेंट्स मरल है ऑटो बस्टूडेंट्स 7 गो फुरखांगर जो चलत रहा और 6 गो जो बैठल रहा और बोले 5 गो जो बेस में बैठल रहा और बोले 3 गो मोटर फिच वाला मरल है और जो आतिफे जन मोटर वन जो चफीर विलियल ओ मके मरल है 2 गो बैसिग्री वाल मरल हैगा 2 गो ई बाइक के मरल है और एगो पिकअप स्क्यूडर और एगो दुई मिला मरल हैगा जो दुई मिला चलावत रहा भाई संगे। तो इतना आदमी मरल है श्रीनाम में और अब हम लोग क्रिस्टस में भाई और हम बताए गाड़ी गाड़ी ब्रोमफीस बेसिकली बचाई के चले यो श्रीनाम देश के बातचीत हम करेला हमारे प्यारे प्यारे जनता। तो ये बातचीत है हमारे जनता यहाँ बताए गए है श्रीनाम देश में एक आदमी भाई एक आदमी अपन स्वांगर औरत के और अपन लड़कन के मैसांदल करी से सोचो भैया कितना गिरल नीच इंसान तो बाटे। बताई गई है देर तक या रखे गो आदमी सिपाही पकड़ी से संदराई के सिपाही पकड़ी से भाई और बतावे गए मैसांदल करला जेकर औरत पेट से रहा भैया पेट से स्वांगर औरत की तुम मरियो जेके लड़कन रहा लड़कों के मैसांदल कर इसको 11 बरस के बेटुआ के बोले तुई ताल से इनको वेरक होकर घटाई दबाए रहा दोनों के बेटुआ के मायो के और बोले हेगा सो इन अ बात कामर हेवन प्लाट्स का फॉलो ट्रेवल है ट्वी इंसिडेंट ऑफ एट एयर सो कबीर बोले है बात कामर में और बोले प्रासी में करी से तुन द फ्रॉ ट्यूशन बेद वेल द कोमन बोले है हार हेवन खवेख दियूत वार दोर से इतर फल कोम द फ्रॉ इस 4 माह स्वांगर द फरदाख्त इस आंखाओं और ओके सिपाही पकड़ के बन करी स्वांगर औरत के मरियो तो सिपाही का तो के बोसी नहीं भैया ओके चाहत रहा इंडिया में रह के तो जाने हुआ बारा जो लाठी बरसे भैया लाठी बहुत जोर बरसे हुआ खराब ना करियो इंडिया में हुआ पे भैया बांस के टिक्के ले के हम तो देखेला जाने सुरिनाम अरे इंडिया में कैसे मारे भैया हुआ पे का बोले है ग्रुप निकल हैगा और का बोले है मोती के इतरा इतरा गाड़ी स्कूल के लड़कन दे से का बोले का बोले है अने अने काकर लक ग्रुप हुआ रहा भैया जंतर मंतर ग्रुप के डेमोस्ट्रेट कर ले रहा और वहाँ पे सिपाही लोग पकड़ पकड़ खूब मारे भैया भरा मार मारे वहाँ पे। तो बात ऐसे हम तरी जाए भैया मिनिस्टरी मिनिस्टर गोपाल के ओर हाँ फन ओमरत तो जाने बिगी मामा ना बिगी मामा बोले हैगा स्पोर्ट के मिनिस्टर जो है पैतृक ओमरन बोले एनडीपीएर है बोले उतार कभी न उठावेगा यू साकर लालिनी
गोपाल के दी फॉल का सा नोई ते बराई करने है गेटो लेडर हेगा बोले गोपाल बोले रोइम तो ओम हर टेलीफोन ऑफ द नेमन वने से वर कबेल बोले उना लेवे कर बार ने सोशल मीडिया बोले बोले का मिनिस्टर वन इस पर मी के तार लेगा तो जनता ऐसे बात थे लेकिन ये फरकी सिंह टाइट रहे हैं तो सब जनतवे के खोजे कि आओ चलो हम मितुलन स्टेम करो तब हम ऊपर करब तो यहां बताए गए भैया जुलूम सिंह के ओर हम जाइल हम जुलूम सिंह बोले ब्रांस्ट ऑफ स्मोकल होए हैगा तीखन खान मेडल्स क्लियरन फाले खाल ब्रांस्ट ऑफ तेलवा उसे क्लियर कर दे भैया वेद प्रकाश जुलूम सिंह बोले एनडीपी पार्लियामेंटेरियर बा बोले हम थक गए बाटी बोले ई ब्रांस्ट ऑफ जो सर नाम से बोले स्मोकल हुए हैं फोकस द पॉलिटिकस बोले तेलवा सबन देशवा में से बैठा लांट ले जा है और बोले हैगा लिखाल ब्रांस्टोर फरकोपर का इंपोर्टेड ऑफ या गोटू से सबन कीने हैं बोले है ओवर ओवर खान तो थे क्लियरन फान हैं ब्रांस्टोर सो दैट दे इसे मक्लगर कान वर्दन अंदर स्केडन बोले उत्तेलवा बोले सबन क्लियर कर दे वे सबन जाने को अंदर स्केड के कौन असली को नकली है और बोले मिनिस्टर जोन बा बोले मुत एर वेल ऑब्सीन दैट सुरिनाम से कंसुमेंट वर्ड पर स्कैम दो दे लिखाल

दोस्तों हम चलते हैं एक मस्त भरी गाना के ओर, लता जी और राजकुमार। और इस फिल्म बहुत पुराना फिल्म है, फिल्म साधना का ये गाना है। लता जी इसमें यानी कि इस गाना को गाया है दोस्तों, और इस गाना आओ मिलकर सुना जाए। कुछ पुराने गाने से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे।

बसी हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों, ये एक बहुत मस्त भरी पुराना गाना है दोस्तों। और ये है लता जी, इसका गाना इस फिल्म में यानी कि इस गाना को गाया है। और आगे को हम अगला गाना की ओर बढ़ते हैं और आज हम आप लोग को मस्त भरी गाना से, और जैसे हर हर प्रोग्राम में चलाते हैं आज भी हम चलाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम और आगे चला जाएं, और ये भी एक पुराना गाना है, सब कुछ सीखा, सब कुछ सीखा है हमने, मैं सिर्फ एक ही बात नहीं सीखा है, और वो क्या है भैया, हम तो है अनारी, और ये अगर अनारी होगा तो क्या सीखेंगे, ये बात हम नहीं कहते हैं, मुकेश जी कहते हैं, आओ मिलकर सुना जाए।

0: सब कुछ सीखा हमने और सिर्फ एक बात नहीं सीखा है तो वो है होशियारी। दोस्तों होशियारी, हम अपना प्रोग्राम को और आगे को बढ़ाते हैं और मस्त भरी पुराने गाने से आप लोग को आज हम फिर सेवा करेंगे हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों। और कहते हैं जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग तो तुम भी गुनगुनाने लगोगे। तो हमारा आपसे यही बात है कि जो गाना हम यहाँ पर चलाने जाते हैं रवि जी की है फिल्म जो इसमें काम किए हैं वो शमी कपूर आशा परेक ने। और अगर आप ये गाना सुनेंगे तो मुझे यही विश्वास है, यही गारंटी है कि आप भी गुनगुनाने लगेंगे, मुझे यही उम्मीद है दोस्तों। तो आओ मिल के सुना जाए कि जॉनी कौन गाना द्राई करे कि हमें भी बैठ के गुनगुनाने पड़ेगे। तो आओ सुना जाए।
1: तुमने मुझसे यही सवाल किया था।
2: क्या
1: क्या मैं तुम्हें भूल जाऊं तो?
2: तुमने क्या जवाब दिया?

और जो तुम मुझे भुला ना पाओगे जब तुम मुझको देखोगे तो कैसे आप आएंगे। ये बात मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाई है दोस्तों। अपना प्रोग्राम को हम और आगे को बढ़ाते हैं और आज भी आप लोग के मस्त भरी पुराने गाना से हम आज आप लोग को सेवा करेंगे। हम चलते हैं, राज कपूर का फिल्म है और मुकेश जी ये गाना को गाए हैं।

उस देश के वासी हम हैं, और वो देश कौन है दोस्तों, जहाँ पे मुकेश रहते थे, और वो है गंगा जहाँ पर बहते हैं, और हम उस देश के वासी है दोस्तों, सूरीनाम के देश के वासी तो हम सब है। और मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाए हैं दोस्तों, अगर आप मुकेश के सुन चुके होंगे तो हम चलते हैं रफी जी के गाना भी सुनना चाहिए, और वो है इशारों इशारों में। क्या होता है इशारों इशारों में, तो कभी दिल चला जाता है, नहीं दिल दिल को चुरा लेता है, दोनों होता है ना। तो आओ मिलके सुना जाए मोहम्मद रफी जी की आवाज।

इशारों इशारों में दिल देने वाले परमान श्री मोहम्मद रवि की आवाज में इस गाना के आपने सुना है और आशा भोसले की आवाज में दोस्तों। और अगर रफी जी जब पिक सुनाया है तो हम तुरंत जाते करोड़ों दिल को चुराने वाले और वो है मुकेश। फिल्म का नाम है श्री 420 नेकंती होंदित 5/5 तक का ये फिल्म है जिसमें राज कपूर और नरगिस ने काम किया है दोस्तों। आओ मिलके सुना जाए।

और फिल्म श्री 420 का ये गाना हमने निकाल कर आप लोग को सुना दिए है। नेक दिन 5/5 तक का फिल्म राजकुमार और नरगिस का इस गाने में गाया है मुकेश जी और लता जी। दोस्तों हम बढ़ते हैं फिर अगला गाना की ओर, वो है परमाशी मोहम्मद रफी का ये गाना है और इसमें काम किया है शायरा बानो राजेंद्र कुमार। फिल्म का नाम है अरमान, फिल्म के नाम है अरमान और ये गाना क्या है धोरो मस्त भरी पुराने गाने से आज हम आप लोग को सेवा करेंगे। म्यूजिक है शंकर जय किशन का और इस गाना को लिखा है हसर जयपुर का ये गाना है और आओ मिलकर सुना जाए।

0: जाना।
1: तुम्हारी हर बांस पे है मुझे बहुत नाज दोस्तों। शेरा बानो राजेंद्र कुमार ने फिल्म अरमान में काम किया है और परमाशी मोहम्मद रफी जी के गाना है हसर जयपुर के साथ में। और हम और आगे को चलते हैं अपना प्रोग्राम को लेकर हमारे दोस्तों, और ये फिल्म का नाम है और देवानंद उषा किरण, फिल्म का नाम है पतिता का। ये फिल्म है दादा हेमंत कुमार और दीदी लजा जी के आवाज़ में। इस गाना को आओ सुनिए।

दादा हेमन जी के आवाज़ में आप लोगों इस गाना को सुना है और एक मस्त भरी रोमांटिक हिंदी सॉन्ग है दोस्तों। इसमें काम किया है देवानंद जी और उषा किरण ने। फिल्म का नाम है पतिता दोस्तों। और उसके बाद हम चलते हैं और एक गाना के ओर और वो भी है फिल्म के नाम है, ये भी एक बहुत पुराना फिल्म है, अलबेला का ये गाना है। हमारे दोस्तों लता जी इस फिल्म में इस गाना को गाया है और इसमें भगवान ने बहुत कमाल किया है दोस्तों। आओ मिल के सुना जाए ये गाना क्या है भाई, बहुत पुराना गाना है ये, और सुना जाए।

भोली सूरत दिल के खोटे, और नाम बहुत बड़ा है कितरूर कितरी को, लेकिन कर्म बहुत छोटे है दोस्तों। भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े हैं बाकी दिल से बहुत खोटे है हमारे दोस्तों। और हमारे दोस्तों, और ये गाना को जिसके सपने में हम रोज आते हैं, और महेंद्र कुमार और लता जी बताए गए हैं, नई खंती सीफन तक का ये गाना है, आओ मिल के सुना जाए।

जिसके सपने हमें रोज आते रहे और गुना गुनगुनाते रहे, वो कहते कि क्या तू ही रह ले भैया। और जो गाना अब हम आप लोग को सुनाएंगे ये है गोरी तेरी नैनों में हम बस गए हैं, हम बस गए हैं। गोविंदा करिश्मा का ये फिल्म है और ये गाना को गाया है हमारा कुमार शानू, कुमार शानू।

Urca Maria, care el palop, lollipop, la ghehe, tu dostu, or aj bhi ma pluku, ek do shair bhi aap luku, sunayegi. और कहते हैं जुदा भी हो के वो एक पल कभी जुदा ना हुआ, जुदा भी होकर वो एक पल कभी जुदा ना हुआ, ये और बात है कि देखने उसे जमाने हुआ, जमाने हुआ। और कहते हैं दोस्तों इश्क को सर का दर्द कहने वाला सुन, मोहब्बत का दर्द को, मोहब्बत को सब का दर्द कहने वाला सुन, हमने तो ये दर्द अपने सर ले लिया है, हमने तो ये दर्द अपने सर ले लिया है। और अपने सर हम लेकर और क्या करेंगे, हमने तो ये दर्द अपने सर ले लिया है, हमारी निगाहों से बचकर वो भला कहाँ जाएंगे। हमारे दोस्तों हमने उनके मोहल्ले में ही घर ले लिया है। तो हम चलते हैं कुछ बॉलीवुड रीमेक सॉन्ग आज हम आप लोग को सुनाएंगे। और ये जो तेरी पायल की छन छन है, आशिकों की चाहत दिल के धड़कन है, आओ सुना जाए।

और ये जो तेरी पायलों के छनछन है आशिकों की चाहत के दिल की, और वो तो धड़कन है, और कहते हैं चिरागों में, चिरागों में दोस्तों, चिरागों में इतना नूर ना होता, अगर चिरागों में इतना नूर ना होता तो ठंडा दिल मजबूर ना होता, तो ठंडा दिल मजबूर ना होता, हम आपसे मिलने जरूर आते अगर आपका घर इतना दूर ना होता। तो कुछ एक दो कॉमेडियन शेरी भी आप लोग को हम सुनाते हैं कि कहते हैं बसाऊं मैं दम रखता हूँ, बजाओं में हम बजाओं में मैं दम रखता हूँ, दिल में छम रखता हूँ, और पता था कि आप पता था कि SMS आएगी तेरा, इसलिए अरे बैठ के तेरा इंतजार करता हूँ, पता है कि आपके ऐप जरूर आएगा, इसलिए बैठ के इंतजार हम करता हूँ कि जानू मेरी जान, आओ मिलकर सुना जाए एक रिमिक्स सॉन्ग, और किशोर जी के सॉन्ग है, फिल्म का नाम है शान, जिसमें अमिताभ बच्चन परवीन बाबी ने काम किया है, आओ सुना जाए जानू मेरी जान।

और जानू मेरी जान और मैं तेरा कुर्बान, कुछ रिमिक्स आज हम आप लोग को सुनाएंगे। कहते हैं कि प्यार की राहों में चलना आसान नहीं। दोस्तों कहते हैं कि प्यार की राहों में चलना आसान नहीं। मैं भी कल चल के देखा मुझे तो रास्ता ठीक ही लगा भैया, ही बतिया है। और कहते हैं चमका न करो जुगनू की तरह रात को ले जाऊंगा मुट्ठी में किसी रोज छुपा करे कि झलक दिखला जाए। आओ हमारा झलक आप लोग रेडियो के माध्यम से देखिए।

0: थपा गुड़ थपा गुड़ थपा गुड़ थपा गुड़ थपा।
1: और झलक दिखला जा हमारे दोस्तों, और अगर झलक दिखलाएगे तो और क्या क्या उसमें देखने को मिलेगा। अब चलते हैं कि आई फिर से गुजरा लम्हा याद, आज फिर से गुजरा लम्हा याद दिलाई उसने, आज फिर से गुजरा लम्हा याद दिलाए उसने, अपना जिगर छेद कर फिर से रुलाया उसने, अपना जिगर छेद कर फिर से रुलाया उसने, हंसे तो थे उसके सामने, देख कर भी ना जाने क्यों फिर से नजरों को चुराया उसने। तो कुछ प्यार की और कुछ शायरी हो जाए दोस्तों, के कहते हैं चेहरे पे मरने वाले हजार मिल जाएंगे, कुछ लोग हर जरूरत पूरी कर जाएंगे, ख्वाहिशें उसके जो दिल से समझते हमें, हम तो जिंदगी भी उसके नाम कर जाएंगे। और जाते हैं किशोर दादा के एक सॉन्ग, फिल्म के नाम है लवारिस।

जरूर अपने को जैसे तैसे में क्या होता है दोस्तों, अपने को जैसे तैसे और थोड़ी देत एंदात है कि कहते हैं ना पूछ किसी से ये उल्फत का, ना पूछ किसी से ये उल्फत का कि बड़ी लंबी कहानी है, मैं गैरों से नहीं हारा, मेरे किसी अपने की मेहरबानी है। हमारा दोस्तों चेहरे पर मरने वाले हजार मिल जाएंगे, चेहरे पर मरने वाले हजार मिल जाएंगे, कुछ लोग हर जरूरत पूरी कर जाएंगे, ख्वाहिश है उसकी जो दिल से समझे हमें, हम तो जिंदगी भी उसके नाम कर जाएंगे, तेरे चुनरिया।

गुरु दोस्तों, तेरी चुनरिया और तेरी चुनरिया में क्या हुआ? तेरी चुनरिया में एक दिल दिल को जख्म दे गई, एक दिल को जख्म दे गया, जिंदगी भर जीने का कसम दे गया। लाखों फूलों में से गुना था एक फूल जो कांटों से भी गहरी चुबा दे गया। और कहते हैं गुलाम की महक भी फीकी लगती है, गुलाम की महक भी फिक्का लगता है, अच्छा नहीं लगता है। कौन सी खुशबू मुझ में बसा गई हो तुम? जिंदगी है क्या तेरी चाहत को सिवा? ये कैसा ख्वाब आंखों को दिखा गई हो तुम? और बचपन बदन पे और सितारे कौन लपेटा है? वो परमा श्री मोहम्मद रफी लपेटा है शामी कपूर से। आओ रिमिक्स सॉन्ग फन रेडियो फॉर होम दौर जॉनी नंबर 1।

और बदन पे सितारे लपेटे हुए और न जाने क्या क्या। और इसके बाद है दोस्तों हम चलते हैं रेक यानी कि हम चलते हैं अगला सॉन्ग के अभी और दोस्तों हम रिमिक्स सॉन्ग के ओर बढ़ते हैं और बढ़ते हैं कि कहते हैं पहले जिंदगी छीन लेंगे मुझसे, पहले जिंदगी छीन लेंगे मुझसे, अब मेरे मौत का भी वो फायदा उठाता है। पहले जिंदगी छीन लिए मुझसे, अब मेरी मौत का भी वो फायदा उठाता है। मेरी कब्र पे फूल, मेरे कब्र पे फूल चढ़ाने के बहाने वो किसी और से मिलने आता है। दैट इज वेयर हार्ट बेस्टर स्टार्ट्स, दैट इज हील हार्ट। दिल मेरा बहुत नाजुक है, जरा इसे संभाल कर रखना, तुमसे जुदा ना हो हम, बस इतनी दुआ करना। और कहते हैं और क्या कहते हैं, एक सॉन्ग की ओर हम बढ़ा जाए कि ये कहते हैं कहो ना प्यार है।

प्यार है, कहो ना प्यार है, ओनली रिमिक्स सॉन्ग कहते हैं। प्यार में बेवफाई मिले तो गम ना करना, प्यार में बेवफाई मिले तो गम ना करना, अपनी आंखें किसी के लिए कम नहीं करना, अपने आंखें किसी के लिए कम नहीं करना, वो चाहे लाख नफरत करे तुमसे पर तुम अपना प्यार कभी उसके लिए कम नहीं करना। दिस इज अंतिम फन मै बेस्ट लॉइस्ट्रांस। एक नोख रिमिक्स ड्राए मीन्स एक नोख रिमिक्स ड्राए। तो आप लोग को हम सुनाते हैं रिमिक्स सॉन्ग, वो है डम डम डम मारो डम दोस्तों।

और दोस्तों डम डम डम डम और क्या था, डम डम ढिगा ढिगा डम मारो दम था। हाँ कहते हैं प्यार करते हो मुझसे तो इशहार कर दो, प्यार करते हो मुझसे तो इशहार कर दो, अपनी मोहब्बत का जिगर आज सारे आम कर दो, और नहीं करते अगर प्यार तो इनकार कर दो, ये लो मेरा मासूम दिल इसके टुटके हजार कर दो, ये लो मेरे मासूम दिल इसको टोर कर हजार कर दो, और मेरा प्यार की पहचान तो ही तू ही तो है, मेरा मेरी मेरा प्यार की पहचान तू ही तो है, मेरे जीने का अमान तू ही तो है, कैसे कैसे बजाएं करे कैसे बजान करे अलार्म इस दिल को, मेरा आशिक मेरी जान तू, मेरी आशिक मेरी जान तू ही तो है। तो आपको कुछ शायरी हम आप लोग को यहाँ से सुनाए हैं और एक ओल्ड गोल्ड सॉन्ग की ओर हम जाते हैं। दोस्तों ये एक ओल्ड सॉन्ग है, फिल्म का नाम है दो उस्ताद, आओ मिलकर सुना जाए।

0: कुछ रोको और कुछ रोको, फिल्म के नाम है उस्ताद।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: meer informatie. www.minimsummerfestival.nl.
1: तो दोस्तों आप जानते हैं प्यार भरी गीतों की बहार प्रोग्राम आज फिर हमारा शुरुआत है। कुछ नई नई, कुछ पुरानी पुरानी और कुछ मीठी मीठी, स्वीटी स्वीटी, और यानी कि शेर और गाना भी आप लोग को हम सुनाएंगे दोस्तों। कि कहते हैं कि मोहब्बत किशोर, मोहब्बत किशोर नहीं सिर्फ एहसास होना चाहिए, मोहब्बत किशोर नहीं सिर्फ एक एहसास होना चाहिए, और हमें जिनसे प्यार है बस उन्हें पता होना चाहिए। हमारे प्यारे सुनने वालों, आज कुछ कॉमेडियन यानी कि कुछ चुटकुली शेर भी आप लोग को हम आज बताते रहेंगे। कि छोटे छोटी सपने है मेरी, अरे छोटी छोटी सपने है मेरा, छोटी सी है आशा, पूरी दुनिया पर हुकूमत हो मेरी, बस इतनी है अभिलाषा हमारे दोस्तों। तो हम चाहते हैं बारिश बन जाना, बारिश बन जाना एक गीत की ओर, आओ मिलकर बस सुना जा।

ओ दोस्तों, बारिश बन जाना कुणाल वर्मा का गाया हुआ ये सॉन्ग है और प्यार भरी मोहब्बत का पैगाम यहाँ से हम और आपके कानों तक पहुँचाते हैं। कि दोस्तों, आप लोग को जैसे मालूम है फिर भी हम बता देते हैं, ये है रेडियो फाहोन। हमारा पता है न्यूटन स्ट्रैट नंबर 520। हम सिर्फ देहाबी प्लस रेडियो पे आप हमारा फ्रिक्वेंसी है 95.3 आप इसको फॉलो कर सकते हैं, सुन सकते हैं, और वो है www.fahon.nl पर। और हम चलते हैं, मंजिल तो एक होंगी लेकिन हर कदम पर तेरा नाम होगा। मंजिल तो एक होगी लेकिन हर कदम पर तेरा नाम होगा। तलाश खत्म हो जाएंगी मेरी जब तेरी लबों पर मेरा नाम होगा। दत्वस वाला मो ये है दोस्तों कि ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती। अगर जब आप दूर हो, आपकी चाहने वाले दूर हो, तो आप इसको जरूर अपने चाहने वालों को सुनाना कि ये दूरी हमसे अब और सही नहीं जाती। बस तेरे पास आने को मेरा जी चाहता है। टूट कर सारी दुनिया की रस्मों रिवाज को तुझे अपना बनाने को जी चाहते हैं। और प्यार की बातें तो करना हमारा काम है। चिरागों में इतना नूर ना होता तो तन्हा दिल मजबूर ना होता। हम आपसे मिलने जरूर आते अगर आपका घर इतना दूर ना होता। तो हम चलते हैं, छाया है यो दिल पे क्या नशा है। दिल है तुम्हारा कविता कृष्णमूर्ति का ये सॉन्ग है। आओ मिलकर हम सब सुना जाए।

0: और कृष्णामूर्ति कविता कृष्णामूर्ति शान का गाया हुआ गीत है, छाया है और ये छाया है जो दिल पे क्या नशा है। और कुछ आज हम नई पुराने गीतों से आपको हम आज सेवा करेंगे दोस्तों। कि कहते हैं उनका गुस्सा, उनका गुस्सा और मेरा प्यार, उसका गुस्सा और मेरा प्यार एक जैसा है, क्योंकि ना उसका गुस्सा कम होता है और ना मेरा प्यार कम होता है। हमारे सुनने वालों, और गुस्सा में तो प्यार करना भी आता है और कभी प्यार में गुस्सा करना भी आता है। कि कहते हैं हमसे दूर होकर हमारी पास हो तुम, हमसे दूर होकर, हमसे दूर होकर हमारे पास हो तुम, हमारी सुनी जिंदगी के आस हो तुम। कौन कहता है हमसे बिछड़ जाएंगे हो तुम, हमारी हमारी यादों में हमारे साथ तुम हो और सदा साथ ही रहेंगे। और ये सिर्फ लफ्ज कह सकते हैं दोस्तों। कि कहते हैं जब बारिश के मौसम आते हैं तो बारिश में और अपने चाहने वाले को याद करते हैं लोग, क्योंकि अकेले महसूस होता है। और खास करके विंटर के महीना में कि ये बारिश का मौसम बहुत तड़पता है, ये बारिश का मौसम बहुत टपट्टा है, वो बस मुझे ही दिल से चाहता है, लेकिन वो मिलने आ भी तो कैसे आवे दोस्तों। उसके पास ना कोई गाड़ी है और ना कोई छाता है। हम चलते हैं कुणाल वर्मा के ओर, रिमझिम से ये सावन। अगर जब हम मौसम की ओर बढ़ते हैं तो रिमझिम का ये सावन और बारिश का, तो ये दोनों तो साथ में चलता है ने हमारे दोस्तों। आओ चला जाए।
1: बचाने तू मुझे, क्यों बचाया?
2: अरे तुम पागल हो गई हो?
1: वो कहता था प्यार करता हूँ, शादी के मंडप से भाग गया साला।
2: तो ये प्रॉब्लम है। ओके बाबा सॉरी।
0: सॉरी बोलने में आप मत चूक जाना।
2: ट्रेन 6 घंटे में यहाँ।
0: एक सॉरी से और क्या क्या काम न बन जाते हो दोस्तों।
2: प्रॉमिस।

और दोस्तों ये रिमझिम ये सावन रिमझिम नौ यानी कि जुबिन नौतियाओ और दीक्षा सिंह का कुणाल वर्मा का गाया हुआ सॉन्ग है कि कहते हैं दिल में हो आप तो कोई और खास कैसे होगी दोस्तों। जब अगर किसी से आप प्यार करते हैं तो आप ये शेर जरूर उसको सुना देना कि दिल में हो आप तो कोई और खास कैसे होंगे, यादों में आपकी शिवा कोई पास और कैसे होंगे। और वो भी कहते हैं कि वो जो हमारे लिए कुछ खास होता है, वो जो हमारे लिए कुछ खास होता है, जिनके लिए दिल में एहसास होता है, चाहे वह कितना भी दूर कर जाए, चाहे वह कितना भी दूर कर दे, दूर रह के भी वो दिल के पास ही रहता है। हमारे प्यारे सुनने वालों और कभी प्यार करने वालों को रास्ते में कभी रुकना नहीं, यानी कि प्यार का जो यानी कि उसका स्नेल है तो दोस्तों बहुत लंबा होता है कि कहते हैं कि प्यार की राहों पे चलना आसान नहीं, प्यार की राहों पे चलना आसान नहीं। मैं भी कल चल के देखा है हमारे दोस्तों, मुझे तो रास्ता ठीक ही लगा है। और हम चलते हैं संजना इस लव, मैं प्रेम की दीवाना हूँ, एक रोमांटिक सॉन्ग फन कृष्णा कुमार कन्नाथ का ये सॉन्ग है।

I love you, संजना I love you, हम नहीं कहते दोस्तों, आप अपना संजना को कह सकते हैं। और ये गीत है मैं प्रेम की दीवाना हूँ, रोमांटिक लव सॉन्ग फन कृष्णा कुमार कुनाथ का और KS चित्रा का ये सॉन्ग है। और दोस्तों कहते हैं वह कितना भी बदल जाए मेरे मोहब्बत कभी नहीं बदलेंगे, ये हमारा पैगाम है। दूरियां बहुत है पर इतना समझ लो दोस्तों, दूरियां बहुत है पर इतना समझ लो, पास रहकर कोई रिश्ता खास नहीं होता, तुम मेरे दिल के इतने करीब हो कि मुझे दूरियों के एहसास नहीं होता। कि कहते हैं जुल्फों पे फूलों को सजा कर रखना, जुल्फों पर फूलों को सजा के आए, चेहरे से दुपट्टा उठा के आए, किसी ने पूछा आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो, हमने कहा शायद आज नहा कर आई हो। तो दोस्तों हम चलते हैं, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है और सिद्धरात मन मल्होत्रा का ये सॉन्ग है, नेहा शर्मा का गाया हुआ सॉन्ग। आज आप लोग को कुछ नए गीतों के सॉन्ग हम आज आप लोग को सुनाते दोस्तों, आओ मिलकर सुना जाए।

प्यार तो हमें भी इस गीतों से होने लगा है दोस्तों। और नेहा शर्मा का गाया हुआ ये गीत है और हम चलते हैं कुछ प्यार भरी और कुछ शायरी की ओर। कहते हैं बहुत लकी हूँ मैं क्योंकि बहुत नसीब वाला हूँ मैं क्योंकि आपके साथ जो मिला है मुझे। और कहते हैं मिलना इफ्तिताक था, मिलना इत्तफाक था, बिछड़ना नसीब था हमारे प्यारे दोस्तों। मिलना इत्तफाक था, बिछड़ना नसीब था, वो उतना ही दूर चला गई जितना करीब था। हम उनके, हम उसका देखने के, हम उसके देखने के लिए तरस रहते थे हमारे यारो, जिस शख्स ने हथेली पे हमारा नसीब था, जिस शख्स की हथेली पे हमारा नसीब था। और कभी कभी जब उम्र लोग को उम्र जब बढ़ते हैं तो उम्र के साथ ही चलना चाहिए कि कहते हैं उम्र के रह, उम्र की राह में जपत बदल जाती है, उम्र के राह में जय बात बदल जाती है, वक्त की आंधी पे हालात बदल जाती है। सोचा था हूं काम कर करके रिकॉर्ड तोड़ दूं मैं, कम बखत पैसा ही सलारस ही देख के हर ख्याल बदल जाते हैं। अरे भैया जब आमदनी कम है तो ख्याल तो अपना बदलना चाहिए। हम जाते हैं अरिजीत सिंह, श्रिया घोषाल के ओर, शाहरुख खान और दीपक का इस फिल्म में काम किए हैं, मनवा लागे, फिल्म के नाम है हैप्पी न्यू ईयर। और हैप्पी न्यू ईयर में क्या होने वाला है आप सुनिए।

और मनवा क्या क्या, मनवा कहां कहां ना लागे दोस्तों। फिल्म के नाम है हैप्पी न्यू ईयर ब्यूटीफुल सॉन्ग फन अरिजीत सिंह श्रिया घोषाल का, जिस फिल्म में काम किया शाहरुख खान और दीपिका दोस्तों। और प्यार भरी प्रोग्राम यहां से हमारा चलते हैं रेडियो फाहुल के माध्यम से। हर एक काम के लिए आप हमें तार कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07 3 6 5 20 20 4 7। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा पता है न्यूटन स्ट्रांड न्यूमर 25 देन हाँ शहर से इस प्रोग्राम को हम प्रस्तुत करते हैं। मोहब्बत भरी प्यार भरी प्रोग्राम हमारा यहां से चलते हैं। मोहब्बत का कोई रंग नहीं है हमारे यारो, मोहब्बत का कोई रंग नहीं है फिर भी वो हसीन है। ये तो वैसे ही है ना भाई कि मोहब्बत का कोई रंग नहीं फिर भी वो हसीन है, उसके सामने दुनिया की हर रंग अरे फिक्का से है दोस्तों। कि मोहब्बत के रंग की तरह खूबसूरत है कि कहते हैं कभी हम मिले तो भी क्या मिले थे, कभी हम मिले तो भी क्या मिले, वही दूरियां वही फासले, ना कभी हमारे कदम बढ़े ना कभी तुम्हारे जियग गई तुम्हारे यादें गई है हमारे यारो। कि कहते हैं दिल दो तो किसी एक को दो दोस्तों, दिल दो तो किसी एक को दो, अरे वो भी किसी नेक को दो, अगर देना है तो किसी नेक को दो, जब तक मिला नहीं जाए और बस मेहनत करते रहो और करते रहो। हम चलते हैं इस कदर तुमसे हमारे, इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया है और इस कदर तुमसे हमें प्यार हो गया है। लव सॉन्ग दर्शन रावल का न्यू सॉन्ग है फन दित्यार मेंस, और हम चलते हैं इस गीत की ओर।

और दोस्तों प्यार भरी गीतों का बहार प्रोग्राम हमार चलते हैं और कहते हैं कि इस कदर का ये गीत है तुमसे हमें प्यार हो गया है, इस कदर हम तुमसे हमसे और प्यार हो गया है कि कहते हैं पहले वो मेरा दोस्त थी अब जाके मोहब्बत बन चुकी है। कभी कभी दोस्त के भी मोहब्बत हो जाते हैं कि पहले वो मेरी दोस्त थी अब जाके मोहब्बत बन चुकी है। पहले सिर्फ उसे याद करती थी और अब तो आदत बन चुका है। हमारे यारो रेडियो फोन के माध्यम से इस प्रोग्राम को हम प्रस्तुत करते हैं कि कहते हैं धड़कते हुए दिल का करार हो तुम, धड़कते हुए दिल का करार हो तुम, इन सजी महफिल के बहार हो तुम, तरसती हुई निगाहों का इंतजार हो तुम, मेरे जिंदगी का पहला प्यार हो तुम। हम चलते हैं अनुराधा पौडवाल की ओर और सोनू निगम की ओर। आपकी याद आई तो दिल क्या करे।

और आपकी याद आई तो दिल क्या करे, माना कि तुम्हें थोड़ा परेशानी करते हैं, लेकिन प्यार भी सबसे ज्यादा तुझे तो ही करते हैं। खुद भी रोता है और मुझे भी रुला देता है, ये बारिश का मौसम उसके याद दिलाते हैं। हमारे प्यारे सुनने वालों, दोस्तों हम जानते हैं वादा रहा सनम आई लव यू फिल्म के नाम है खिलाड़ी, इस गीत को गाया है अभिजीत भट्टाचार्य एंड अलका याग्निक। आओ मिलकर सुना जाए इस सॉन्ग। और

क्या हुआ तेरे वाला दरभर गीत ब्रोकन हार्ट सॉन्ग का प्रोग्राम आप सुनेंगे राजन के साथ। प्यार किया मुझसे इसे हार किया किसी और से, खुदा करे जिसे इसे हार किया वो भी प्यार किया किसी और से।

कुछ लोग जिंदगी होते हैं कुछ लोग जिंदगी में होते हैं, कुछ लोग से जिंदगी होते हैं और कुछ लोग होते हैं तो जिंदगी होते हैं।

ब्रोकन हार्ट सॉन्ग बिछड़े हुए यादों दोस्तों और दर्द भड़कीट के प्रोग्राम में अब की बार पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत के खुदा समझा।

मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी एक बंद किताब है, मेरी जिंदगी एक बंद किताब है जिसे आज तक किसी ने खोला नहीं, जो खोला वो पढ़ा नहीं, जो पढ़ा वो समझा नहीं, और जो समझा वो मिला नहीं।

0: प्रश्न की बाबू।
1: भर के जरा कोई हाथ ना दे तो दिल जरा क्या करे, अब की बार सुबह पे दर्द भरी दास्ता चली आई।

क्या हुआ तेरे वाला दर भर गीत ब्रुकन हार्ट सॉन्ग का प्रोग्राम यहाँ से समाप्त होता है। फावन इंसान रेडियो पर आप चुन है। बहुत से लोग तार करते हैं, कहते हैं कि दब प्लस के जरिए प्रोग्राम नहीं सुनाई देता है, तो फ्रिक्वेंसी दोस्तों दब प्लस का फ्रिक्वेंसी आप लिख कर रख लीजिए। फ्रिक्वेंसी है 105.3 MHz या कनाल 8A। एक बार मैं दोहराता हूँ, फ्रिक्वेंसी 105.3 MHz या कनाल 8A। अगर आपको फाहन हिस्सा रेडियो सुनना है तो आप चले जाइए दप प्लस रेडियो पर, और इसी फ्रिक्वेंसी पर आप रेडियो को सुन सकते हैं।

सनम हद से आगे बिछड़ने लगे या बढ़ने लगे, ये दिल के बात है, दिल ही तो जाने दोस्तों। प्यार हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ और किसी से हुआ, ये आपको खुद मालूम होगा। इसलिए कि हर इंसान जिंदगी में एक बार जरूर प्यार करता है, कोई नहीं कह सकता है कि मैंने कभी प्यार नहीं किया। अब की बार हमें तुमसे मोहब्बत है। नाइटिंगेल लता एंड नीति एंड मुकेश।

आपने खुद सुना कि एक कांची अपने कांचा से क्या कहा, रुक जा न जा दिल तोड़ के, लेकिन मेरे दिल में आज क्या है मैं आपसे नहीं बताऊंगा, आप खुद सुनिए।

0: फाउन हिंसा रेडियो पर आप चुने हर एक काम जो आपको रेडियो के जरिए कराना है आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे दफ्तर से 905-3752828 फिर सीफर पर आप तार कीजिए। फिल्म प्यार मोहब्बत देवानंद शायरा बानू के साथ इस फिल्म में काम किया आशा एंड पद्माश्री मोहम्मद रफी, दोनों की मीठी आवाजों में आप सुनेंगे प्यार मोहब्बत के सिवा ये जिंदगी क्या जिंदगी।
1: चारों तरफ पानी ही पानी मगर पीने के लिए एक बूंद भी नहीं।
2: भगवान पर भरोसा रखो।
1: मैं नहीं मानती तुम्हारे भगवान को।
2: लेकिन मैं मानता हूँ।
1: मुझे क्या, मैं तो आपसे आपके भगवान से और जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। इस तरह तड़प तड़प कर जिंदा रहने से तो अच्छा है कि डूब कर मर जाओ।
3: ये क्या कर रही हो?
1: छोड़ दो मुझे, मरने दो, छोड़ दो।

सुना है सच्चे दिल से की गई प्रार्थना भगवान एक बार जरूर कबूल करते हैं। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, जिंदगी दी है तो जिंदा रहने का अधिकार भी दो।

प्यार मोहब्बत का टाइटल सॉन्ग अभी आपने प्रोग्राम में सुना। दोस्तों, शाहरुख खान, शाहरुख ने काम किया प्रीति सिंटा के साथ और फिल्म वीर सारा। आप जानते हैं, आपको मालूम है कि शाहरुख खान बॉलीवुड का सबसे धनी एक्टर है। सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा डॉलर्स शाहरुख खान के है। और साथ ही साथ शाहरुख खान को त्रिनिदाद टोबैगो में वहाँ पर एक क्रिकेट टीम है। शाहरुख खान फिल्म एक्टर से बने से पहले ये एक स्पोर्ट मान था और क्रिकेट में बहुत भाग लेते हैं और हमेशा ये पोडियम पे बैठता रहता है और इसका इंडिया में भी क्रिकेट क्लब है। तो शाहरुख और सेंता दोनों का फिल्म वीर सारा का सॉन्ग आप सुनेंगे।

यहां हूं। अब की बार दोस्तों फिल्म हरे रामा हरे कृष्ण का सॉन्ग मैं पेश करूंगा। आप जानते हैं उन दिनों में, बीते हुए दिनों की बात है, यारन सीफन तक के जब ये फिल्म रिलीज हुआ सुनाम देश में तो हड़ताल मचाया। फुल हाउस से फिल्म लगभग 2 या 3 हफ्ते लगातार पेश किया गया सुनाम देश में, और देवानंद मुमताज के साथ इस फिल्म में काम किया। देवानंद दोस्तों आज जब सितंबर के 24 तारीख है तो 26 तारीख 7 सितंबर को इनका जन्मदिन, जो जीवित रहते तो अपन जन्मदिन मनाते, 19 सितंबर 1923 में ये पैदा हुआ और मृत्यु हुआ 3 दिसंबर 2011 लंदन के एक हॉस्पिटल में। देवानंद का असली नाम था धर्म देव और मुमताज के साथ इस फिल्म में काम किया। मुमताज दोस्तों जिनका बेटी का शादी हुआ है फिरोज खान का बेटा के साथ, तो दोनों के फिल्म का सॉन्ग है हरे रामा हरे कृष्णा का, कांची रे कांची हे कांची।

आपकी बार आते जाते खूबसूरत सड़कों पे कई लोग मिल जाता है। क्या बात है, जितना भी दूर जाओ घर का रास्ता जरूर मिलेगा, जितना भी दूर जाओ घर का रास्ता जरूर मिलेगा। हे राही चला चल तू मत डर।

इसमें कुछ लोग याद रह जाते हैं और कुछ भूल जाते हैं। वास्तव में दोस्तों ये हमेशा होता रहता है। सड़क पे कई लोग चलते हैं और कभी कभी किसी को देख लेते तो सोचते हैं ये आदमी को मैं कहीं जानता हूँ, जान पहचान घट लगता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। पंछी सुर में गाता है

जैसे हो मेरी दिल रुबा। दोस्तों मनोज कुमार ने काम किया फिल्म अनीता में साधना के साथ, और इस फिल्म का एक गीत है, गोरे गोरे चांद से मुख पर काले काले आंखें हैं। मनोज कुमार का असली नाम हरि किशन था या है, और जब फिल्म में आया तो उनका नाम पड़ गया मनोज कुमार। अबोटाबाद पाकिस्तान में फिल्म जिंदगी निकलिंग सीफन दैर तक में इनका पैदाइश हुआ। हम सब मिलकर सुनेंगे माइटी मुकेश की आवाज में ये गीत।

ये काले काले आंखें के बाद तू चीज है बड़ी मस्त मस्त, उदित नारायण एंड कविता कृष्णा मूर्ति। दोस्तों उदित नारायण बहुत से डुएट गाया है, लेकिन अलका याग्निक के साथ ज्यादा से ज्यादा गीत गाया है। फिर भी कविता कृष्णा मूर्ति के साथ आप सुनेंगे तू चीज बड़ी है मस्त मस्त।

जो खो गया, जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, और जो पा लिया उसे खोया नहीं करते।

तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। दोस्तों गाता रहे मेरे दिल तू ही मेरी मंजिल। फिल्म गाइड, गाइड का मतलब है हिट्स। देवानंद इस फिल्म में एक हिट्स था और फिल्म के नाम भी इसी तरह रखा गया गाइड। हसीनों का पुजारी किशोर कुमार एंड नाइटिंगेल लता मंगेशकर दोनों के मीठे आवाजों में आप सुनेंगे।

और भड़ागीर ब्रोकन हर सॉन्ग के प्रोग्राम में तुम अगर मुस्कुराना चाहो, तुम अगर मुस्कुराना चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगे तो बड़ी मुश्किल होगी, माइटी मुकेश की आवाज़ में।

किसी के प्यार में, किसी के प्यार में एक गहरी चोट खाई है, किसी के प्यार में एक गहरी चोट खाई है, वफा से पहले बेवफा पाई है। लोग तो दुआ मांगते हैं इस हाल में मरने की, मगर हमने उसी के यादों में जीने की कसम खाई है।

हरे गीत बिरकनाथ संघ का प्रोग्राम आप सुन रहे राजन के साथ, वो भी फाहन हिंदुस्तान रेडियो के जरिए। अब की बार ना अपना था, ना अपना था जो कल गुजरा,

छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है, हंस के जियो, भुला के गम सारे, भुला के गम सारे, दिल से जियो। अपने के लिए नहीं सही, अपने के लिए नहीं सही, तो अपनों के लिए जियो।

चारों का सफर में आज थोड़ा सा बातचीत होगा। मजरू सुल्तान पूरी एक स्क्राइफर, एक लिखत है गीतों का, और था यार दोस्तों, और इन दिनों में दुनिया नहीं है, लेकिन मजरू सुल्तान पूरी असली नाम असरूर उल हसन खान, पैदा हुआ 1 अक्टूबर 1939 में, और इनका पिता वो अंग्रेजी के समय पे मजरू सुल्तानपुरी का पिता एक सिपाही था और एक स्ट्रेंग मुस्लिम। वो सोचा था मजरू को एक दूसरा रास्ते पर ले जाने के, लेकिन मजरू सुल्तानपुरी का ख्वाहिश था गीत लिखने को, गज़ल लिखने को वगैरह वगैरह। तो इंडिया का, भारत का जितना बॉलीवुड का जितना फिल्म म्यूजिक कांते है, जितना म्यूजिक डायरेक्टर है, लगभग सभी के साथ ये गीत पेश किया है दोस्तों। और मजरू सुल्तानपुरी को अब्दुल रसीद, एक फिल्म डायरेक्टर, देखा मुसादा बदली के साथ। मुसादा बदली एक शायर था और इसका शायरी जो था तो वो सुल्तानपुरी ने लिखते थे, मजरू ने लिखते थे हमेशा। तो इनका शायर जब सुना तो इसे कहा चलो फिल्म इंडस्ट्री में और वहाँ पर गीत लिखो। तो ये नहीं चाहते थे, फिर भी मुसादाबादी ने बातचीत किया और इन्हें ले गया नौशाद के पास। नौशाद बातचीत किया मजरू सुल्तानपुरी से और नौशाद ने कहा अच्छा मैं एक फिल्म से शुरुआत हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप एक गीत लिखे बादल आए झूम से इस तरह से। तो मजरू सुल्तानपुरी 2 रोज़ के अंदर गीत लिख के और पेश किया नौशाद के साथ। नौशाद बहुत खुश हुआ, तभी से वो कदम रखा फिल्म इंडस्ट्री में और बहुत से गीत लिखा दोस्तों। 50 साल वो फिल्म इंडस्ट्री में काम किया और लगभग 300 गीतों उन्हें लिखा है। मजरू सुल्तानपुरी, मजरू सुल्तानपुरी दोस्तों इस दुनिया में, लेकिन उस जिस तरह से वो गीत लिखा है उर्दू भाषा, वो वही लाया है बॉलीवुड या फिल्म इंडिया का फिल्म इंडस्ट्री में। मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा है फिल्म यारों की बारात में एक गीत, चुरा लिया है तूने जो दिल को, हम सब मिलकर गीत को सुनेंगे।

मजरू सुल्तानपुरी। दोस्तों जब एक गीत पेश होता है तो जो गायक होता है, राफ़ी हुआ या मुकेश हुआ या किशोर हुआ, तो लोग कहते कितने अच्छी तरह से गीत पेश किया, वाह हुआ कहते। लेकिन जो जो कोई ये गीत लिखता है उसका बात, उसका नाम लोग कभी नहीं लेता है। मिसी कांत जो होता है, मिसी डायरेक्टर, ओपी नायर भाई, सोनी कुमार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वगैरह वगैरह, उसका नाम भी लोग लेते हैं। लेकिन जो लोग ये गीत लिखते हैं उसका नाम कभी नहीं लोग लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मजरू सुल्तानपुरी, मजरू सुल्तानपुरी को दो अवार्ड भी मिला। एक अवार्ड मिला फिल्म दोस्ती में, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे ये गीत पर, और साथ ही साथ निहतक में दादा साहेब फाल्के अवार्ड मजरू सुल्तानपुरी को मिला। एक लड़की भीगी भागी से फिल्म चलती के नाम गाड़ी नहीं थी आख्तम फैज तक में, जब किशोर कुमार ने फिल्म को लिखा और तीनों भाई ये फिल्म में काम किया, अशोक कुमार, किशोर कुमार और अनूप कुमार। इस फिल्म का गीत जितने थे सब किशोर कुमार ने गाया, लेकिन जितना गीत लिखा गया ये सभी ने मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा। एक लड़की भीगी भागी से सुनेंगे।

0: भी भागी सी होती रातों में जागी सी मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: जरूर सुल्तानपुरी, मजर सुल्तानपुरी ने एक किताब लिखा और एक किताब से उन दिनों का प्रेमी जो था इंडिया का नेहरू जी, तो नेहरू जी ये किताब से खुश नहीं था और मजरू सुल्तानपुर से कहा आपको माफ़ी मांगा चाहिए। लेकिन मजरू ने काम नहीं किया, माफ़ी नहीं चाहा, माफ़ी नहीं मांगा तो उन्हें जेल पे भेज गया गया दोस्तों। और साथ ही साथ मजरू सुल्तानपुर एक कम्युनिस्ट था और जहाँ वो रहा था आसपास के आदमी उन्हें नहीं चाहते थे, इसलिए कि वो कम्युनिस्ट था और इंडिया एक डेमोक्रेटिक देश था। तो जब ये जेल गया, जब खफांगस गया, जब लौट के आया, उन बीच में उनका जो घर पर नौकर था वो घर का जितना सामान रहा लेकर चला गया सभी सामान लेकर चला गया। और जब घर पर गया तो घर में कुछ नहीं था और आसपास के लोग जो थे उन्हें गुस्सा में ताकते थे। तो मजरू सुल्तानपुरी ने घर छोड़कर चला गया और गया एक स्टूडियो में, एक स्टूडियो जो रंजीत स्टूडियो था, तो वहाँ जाके बैठा था और सोचा था मैं क्या करूँ। उसी जगह पर नरगिस का माँ बैठा था, तो नरगिस का माँ उन्हें चीन लिया और कहा कि भाई सुल्तानपुरी आपके क्या हुआ, आपका क्यों इस तरह से दिखाते हो। तो उन्हें कहा कि मैं जेल से आया हूँ और लोग मुझे नहीं पसंद करता है वगैरह वगैरह। तो नरगिस के माँ उन्हें अपन घर पर ले गया और 8 महीना तक वो नरगिस के घर पर रहा, मजरू सुल्तानपुरी दोस्तों। और मजरू सुल्तानपुरी ने भी अवार्ड छोड़ के दोस्तों, जैसे मैंने कहा 50 साल के अंदर ये गीत लिखा, 50 साल गीत लिखा और लगभग 300 गीतों इन्हें तैयार किया। फिल्म धर्मक्रम में मुकेश के लिए ये गीत लिखा।

मजरू सुल्तानपुरी। दोस्तों दुख की बात यह है कि मजरू सुल्तानपुरी का मृत्यु हो गया 80 साल के उम्र में, और वो भी फिरंत दिख में यार त्वे दर्शन में। सितारों का सफर यहाँ से मैं समाप्त करता हूँ दोस्तों। मैं वादा नहीं करता, सोचता हूँ आने वाला हफ्ता सितारों का सफर में एक दूसरा लिखत, एक दूसरा श्रेफ के बारे में बातचीत करने को।

मैंने प्यार किया तुम्हें रीजन से अभी आप सुन रहे थे द टाइटल फ्रॉम द मूवी सावन। प्यार में कभी कभी है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मुसु मुसु हासी।

0: خوشی. I'm sorry.
1: प्यार भी कभी कभी है फिल्म का नाम. इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं मुसु मुसु हाँसी. दिल है छोटा सा छोटी सी आशा.

0: रोजा है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हमने पेश किए है दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। एक बहुत सुंदर सा गीत हम पेश करने वाले हैं आप सभी के वास्ते। सोनू निगम जी की आवाज में आप सुनेंगे।
1: You and Robbie, huh? What's up?
2: Whatever.
3: Hey, but where's Rohan?
2: I don't know, and I don't care. I hate him.
4: But I love you.

देखा तुमको जब से बस देखा तुमको यारा, अलका याग्निक के साथ में सोनू निगम जी आपको सुनाने वाले थे। दीवाना है देखो बेकरार।

0: are you?
1: दीवाना है देखो बेकरार। अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और सोनू निगम जी की आवाज़ में। कल हो ना हो है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं प्रिटी वुमन।

प्रीटी वुमन भी आप सुन रहे थे, और प्रीटी वुमन के बाद हम पेश करते हैं ये सुंदर सा गीत आप सभी के वास्ते।

जग घूमया थाड़े जैसा न कोई, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी सुल्तान से हमने पेश किए हैं अक्रोच है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से आप ये सॉन्ग सुनेंगे।

0: हमारे गांव शबरामपुर।
1: अक्रोश से अभी आप सुन रहे थे सौरेबाजी, ब्लैकमेल है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं तूने दी बेकरारी।

फ्रॉम द मूवी ब्लैकमेल से हमने पेश किए है तूने दी बेकरारी ए मेरे सनम, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। फ्रॉम द मूवी फटा पोस्टर निकला हीरो।

फटा पोस्टर निकला हीरो इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं, मैं रंग शरबतों का तो मीठे घाट का पानी अभी आप सुन रहे थे।

0: 2021, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: जरा सा हम देखें तो एक बहुत सा सुंदर गीत हम पेश करने वाले हैं आप सभी के वास्ते. फ्रॉम द मूवी विलन से आप सुनेंगे और इसी फिल्म से चलिए ये गीत हो जाए आप सभी के वास्ते. खास करके ये गीत को मांग किए हैं आयशा जी, तो पेश है आयशा जी के नाम.

जो तू मेरा हमदर्द है, अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों, फ्रॉम द मूवी विलेन से हमने पेश किया है और ये गीत खासकर कुमांग किए थे आयशा जी, तो उन्हीं के वास्ते हमने ये गीत चलाए हैं। अपना बना ले, फ्रॉम द मूवी भेड़िया से आप सुनेंगे सुनने वालों।

भेड़िया है फिल्म का नाम सुनने वालों, और अभी आप सुन रहे थे अपना बना ले पिया, फिर भी मैं तुमको चाहूंगी फ्रॉम द मूवी हाफ गर्लफ्रेंड।

हाफ गर्लफ्रेंड है फिल्म करम, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। मैं फिर भी तुमको चाहूंगी। गदर 2 इसी फिल्म से हम पेश करते हैं चल तेरे इश्क में।

गदर तो इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। सुनने वालों, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी इसी फिल्म से हम पेश करते हैं, तुम क्या मिले।

क्या मिले अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। शहजादा है फिल्म कराम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं छेड़खानियां।

0: फ्रॉम द मूवी शहजादा से हमने पेश किए हैं छेड़खानियाँ, और छेड़खानियाँ के बाद फ्रॉम द मूवी गदर 2 से आप सुनेंगे मैं निकला गरी लेके।
1: और मैंने एक मोटरसाइकिल दिला दो ना,
2: कुछ और मंगला ना, मोटरसाइकिल लो
3: दिला दीजिए ना।

मैं निकला गड्डी लेके, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी गदर टू, जुग जुग जियो है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते दुपट्टा।

फ्रॉम द मूवी जुग जुग जियो से भी आप सुन रहे थे दुपट्टा, और दुपट्टा के बाद हम पेश करते हैं शो मी योर ठुमका फ्रॉम द मूवी तुम झूठी मैं मक्कार।

अभी आप सुन रहे थे शो मी द ठुमका, और ठुमका के बाद हम बढ़ चलते हैं झुमका की तरफ। वह झुमका

Watchunga. From the movie Rocky और रानी की प्रेम कहानी, इसी फिल्म से हमने पेश की है वट झुमका, तुम झूठी मैं मक्कार। इसी फिल्म से एक और गीत हम पेश करते हैं सुनने वालों, मैंने पी रखी है।

हरिओम एक ही दम भैया बीरबल के स्टाइल में कैसे रह लो आप लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज का दुनिया के दोस्तों स्वीकार कीजिए हम लोगों का सागर से भरा हुआ प्यार नमस्कार और साथ ही साथ कबूल हो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मोहब्बत से भरी हुई सलाम को और आप सभी को भी हरिओम हरि बोल सत श्री अकाल। मैं हूं आप लोगों का सेवक खिदमतगार सुरेंद्र कृष्ण दत्त भगवान दीन जिसे आप ढेर सारे श्रोतागणों आकाशवाणी के दोस्तों भैया बीरबल के नाम से भी जानते हैं। बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम संगीतकारों का दास्ता नाम कार्यक्रम खेलिंग मित्र ओतिस गोद गीत और गजल लेकर उपस्थित हुआ हूँ साथियों। ये आशा उम्मीद लेकर कि आज का सिलेक्शन भी आप सभी को जरूर पसंद आएगा। जहाँ पर भी जिस साल में हो घर पे हो या तुम रिटायर में सफर कर रहे हो या काम कर रहे हो दुनिया के जो भी कोने में कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे। अब हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को एक शुभ रात्रि पेश है मिथिलफील लाइस्टर प्लेजर के साथ। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो स्टेबलाइज्ड फिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुन सकते हो। जो भी रेडियो का काम आप फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान करना चाहते हो यारो तो जरूर आप तार करें फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के दफ्तर में फरमान दख तो फ्रेडाग टेनिस कंटोर यूर कंट ऑफ द फॉल्कन द टेलीफोन नंबर्स बेलन कंटोर 07-35-60-22-47 और स्टूडियो का तार का नंबर है 07-32-60-20-77। क्वालिटी गारंटी और सर्विस के साथ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो काम आप लोगों के लिए बेचैनी से करने के लिए इंतजार में रहते हैं एंड इट वर्केट है उनसे क्वालिटी गारंटी एंड नैचुरली फूल सिर्फ ऑलवेज लेकर दरबै फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो उनसे पहले आप श्रोताओं ने एक अति सुंदर प्रोग्राम को सुन रहे थे जो खास करके विजयंती बहन जी ने आप श्रोताओं के सेवा में पेश की। इस तौर तरीके से विजयंती बहन जी सदियों से आप सभी को सेवा करती आ रही है। ये आशा उम्मीद है फूल टीम की तरफ से कि उनकी पेश किया हुआ प्रोग्राम आप श्रोताओं को जरूर बेहद पसंद आया हुआ होगा। के लिए तय दिल से धन्यवाद विजयंती बहन जी फूल टीम की तरफ से और आपको भी एक शुभ रात्रि। अगर आपके घर पे खुशी का दिन मनाया जा रहा है हो सकता है कि आपके घर पे एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया होगा या तो किसी के जन्मदिन आप सभी धूमधाम से मिलकर मना रहे हैं। हो सकता है कि आप विवाह संस्कार की तैयारियां में भी लगे हो। जो भी खुशी के दिन जश्न आप सभी मना रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के फूल टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारे बधाइयां ही बधाइयां खुशियां ही खुशियां प्यार मोहब्बत के साथ पेश है और ऊपर वाले से हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप सभी के नेक मनोकामनाएं नेक इरादे सभी पूर्ण होते जाए। अगर आपके घर पर एक दुख का घड़ियां बड़ा है पाप आप एक मातम में हो गमी में तो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो अपने फूल टीम के साथ आपके दुख में उपस्थित है मातम में शरीक है और ऊपर वाले से हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप सभी को शैन शक्ति और शांति प्रदान करते रहे। हिलफील्ड्स डायरेक्टर मैथ्यू सिद्धवाद जो बीमार लाचार या आपकी तंदुरुस्ती के लिए हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो जाए बेहतर हो जाए चंगा हो जाए यानी तो फ्रेत है जिंदगी का मजा रोजाना लेते रहना बंधु और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को भी सुनते रहना और हो सके तो हम लोगों के बारे में जरूर थोड़ा बहुत बातें शाते करते रहना फन हर्त भी कृष्ण आप कामयाब हुए तो हमारे फूल टीम की तरफ से तह दिल से बधाइयां ही बधाइयां और फुरखा नेत्सोडोर। हो सकता है कि आप कल या आज कामयाब नहीं हुए हो तो चिंता के कोई बात नहीं है बंधु मोर्खस वीरंदा है नोइट ऑफ है वो तो खलेर्त है ऊफराव अब सोता इस अब ये वैरक नेवर गिव अप ब्रदर ना सीसा सो सो लो बी अम ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड आई विल बी थैंक्ड फॉर हैट लिस्टरन परवेश
weer de Mare Full Team die er zich zo zwaar getem. Fijne vakantie. Blijf luisteren naar Fahon Hindustani Radio. You're gonna like it. En dat menen wij ook. Maar hoe is het tijd je op deze? Kort hoor ik heb deze jaar, trappie jaar, hey, op zoek naar meer warmte. Dan zeggen wij een hele fijne vakantie aan u. En natuurlijk blijf luisteren, hè. Tamam luk zijn te hei van Hindustani Radio kom in vakantieadres internet kelleren dwara. To happy sunye hem logo ko op uw tablet, smartphone of laptop. Zo bent en blijft u van alles op de hoogte van uw favoriete radiostation. En dat is natuurlijk hem in Den Haag, Sherka, de Warendo, die van Hindustani Radio 24 hours at your service. साथियों प्रोग्राम का शुरुआत तो मैं सदियों से करते आ रहा हूं वही शिक्षा सबसे भरा हुआ बयान के साथ फ्रॉम द मूवी ललकार 1972 कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी क्या गा लो मुस्कुरा लो महफिल सजा लो क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा जीवन के डोर तो बहुत ही कमजोर है यारो ये कब टूट जाएगा ये कब समाप्त हो जाएगा ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है ना इसीलिए हम लोग तो आपसे भी से सदियों से यहां से कहते रहते हैं और सदा कहते ही रहेंगे कि हैव टू नास्ट ऑल दैट लीफ आई वाज इमेंस कंधे से कंधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है साथियों खुद को आगे को बढ़ाना है देश को भी आगे को बढ़ाना है कौम को भी आगे को बढ़ाना है तो ये शिक्षा सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे साप्ताहिक प्रोग्राम संगीतकारों का दास्तान नाम कार्यक्रम खलिंग में गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड कुछ पुराने पुराने नखबे और उसके बाद फ्रॉम 3 to 11 ओनली सॉन्ग्स जिन मूवीज में हम लोगों का महान अभिनेता द हिटमैन द ही मैन द ग्रेट धर्मेंद्र जी ने काम किया है बीच में कुछ ज्ञान के बातें शेर शायरी है तो कुल मिलाकर हमारा और आपका साथ तकरीबन 10:30 तक चलेगा तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना मजे लेते रहना जहां पर भी जिस साल में हो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो लॉफ योर और जैसे देखा जाए बाहर जब मैं आ रहा था तापमान तकरीबन 26 और 27 डिग्री के दरमियान था अभी तो अंधेरा होने वाला है सॉन्ग्स फॉर द स्ट्रिंग आज ओक ना वेल कैक गब्रुक एन हेल गुए ब्रिल गा नीट मेट जे ब्लोटे ओगे कैक अल्सब्लीफ्ट रफी साहब हमेशा की तरह पैगाम का शुरुआत

Galo muscuralo mefile sejalo amisha kitra program ka shuruat revisar ji ke majuravas me saathiyo aaj ka is ratri ka program 12 augustus 2026 ka haseen ratri ka program jo aap sabhi ke naam hai main shuruat karne wala hu thank you eva aan jullie lieve moeder apni pyari pyari maa ko yaad kijiye और ये अति सुंदर बयान को सुनिए आई डू फिल्म जागृति 1954 गकंपोनेर्ड डोर मेस्ट्रो दादा हेमंत कुमार जी और गाने वाली है आप सभी के लिए शुरू का देवी आशा भोसले जी तो मिल के सुनते हैं एक 10 साल का बच्चा अपने मां के लिए ये अति सुंदर बयान को फरमा रहा है जरा लफ्जों पे जरूर ध्यान देना

Cello Cello Ma, beautiful song from the movie Jack Reedy 1954, composed by Dada Hemant Kumarji aur Awasta Asha Bhosleji ka. घड़ी की तरफ देखता हूँ साथियों, तो 16 मिनट गुजरने वाला है 8 बजकर. अगला बयान एक जबरदस्त सॉन्ग है फ्रॉम द मूवी ताज महल 1963, कंपोज एंड अरेंज बाय माएस्ट्रो रोशन लाल नागरथ, मेरे बगैन तालस रोशन, और लिखा है अति सुंदर बयान को श्री लुधियानवी जी. सुनाने वाले हैं आप सभी को हमेशा की तरह वही हसीन जोड़ी, क्या दिलबंदी दुहत से दोनों मिलकर गाए हैं. वारफान इन फंस दित इस पांव छू लेने दो फूलों को, रवि साहब और लता जी के आवाज में एंजॉय कीजिए.

Zon Andrew Sultan, que chama-me Pischia Gaido Vilentat Mahal. Composed and arranged by Maestro Roshan aur Awazid He Lataji aur Rafi Sahib Ji ke uit 1963. फोन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है साथियों बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम गीत और गजल संगीतकार का दास्तान नामक कार्यक्रम लिंक में ओल्ड इज गोल्ड गीत और गजल आप सुन रहे हैं। अगला बयान जरा दिल को थाम लीजिए स्पेशल फॉर द तलत महमूद फैंस द मैन विद गोल्डन वॉइस को लाते हैं प्रोग्राम में और सुनाते हैं आप सभी को ये सुपर हिट गजल। इट्स अ नॉन फिल्म गजल तो जरा ध्यान से सुनिए अपने ही अंदाज में द ग्रेट तलत जी।

Hoofdgevoel zong Kja Bate Oese Zamanike 1950 kaje film he Wafa Aur je kuch rock and roll style pe sajaya gaya tha door maestro Bully C. Rani aur gane wali thi us zamanike Nightingale Shamshad Begum ji. अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं और ये भी एक बहुत ही पुराना सॉन्ग है आउट 1956 आउट फिल्म भगम भाग और जरा दिल को थाम लीजिए ये भी एक जबरदस्त सॉन्ग है और कंपोज किया गया है एक दौर जबरदस्त म्यूजिक डायरेक्टर उस जमाने का द ग्रेट ओपी नायर जी अल्फाज है मजरू सुल्तानपुरी जी का और हाँ हाँ आवाज है संगीतकार का बादशाह और सहिनशाह द ग्रेट हसीन का पुजारी किशोरदा और सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी रफी साहब जी के ये दोनों आवाजें आप सुनिए 1956 उपनाम उतना ग्रेट ना है लेकिन क्या काम किए हैं ये लोग उस जमाने में हे बाबू ये है जमाना तेरा द ग्रेट किशोर दा रफी साहब टुगेदर

बाबू, काले तो खुशी का राग दुनिया है भागम भाव। हे बाबू ये है जमाना तेरा, हे बाबू ये है जमाना तेरा, हे बाबू काले तो खुशी का राग दुनिया है भागम भाग।

0: मत वाले
1: गाले तू खुशी का राग दुनिया है भागम भाग ए बापू ये है जमाना तेरा ए बापू ये है जमाना तेरा ए बापू
0: गाले तू खुशी का राग दुनिया है भागम भाग।

0: प्यारे मत वाले काले तो खुशी का राग तो नहीं है भाग भाग हे बाबू ये है जमाना तेरा है केशू ये है जमाना तेरा है केशू
1: काले तो खुशी का राग दुनिया है भागम भाग हे

0: तराना है ये सारा ही जमाना तेरी महफिल।
1: अरे काहे तू चले है तेरे कदम तले है तेरे।
0: तराना है ये सारा ही जमाना तेरी महफिल।
1: सुन प्यारे कहो प्यारे मत वाले
0: काले तो खुशी का राग दुनिया है भागम भाग। हे बाबू है जमाना तेरा। हे बाबू काले क्या है भागम भाग। हे बाबू ये है जमाना तेरा। हे बाबू
2: क्या बात है। ब्यूटीफुल सॉन्ग किशोर दा और रफी साहब जी के आवाजों में आप सुन रहे हैं एड फिल्म भागम भाग। और इस फिल्म में किशोर दा और भगवान दादा ने काम किए हैं। कंपोज एंड अरेंज बाय उस जमाने के महान फनकार द ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर ओपी नायर। साथियों घड़ी की तरफ देखता हूं तो 3 मिनट गुजर चुका है। 8:30 तो वक्त हो गया है ना कुछ ज्ञान के बातें हो जाए। पुराने जमाने और इस जमाने के कुछ विद्वानों कुछ पढ़े लिखे लोगों और कुछ मशहूर लोगों ने कुछ पॉपुलर सितात लिख लिख कर चले गए जो मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूँ। कुछ मजेदार है कुछ है जो याद करने के लायक भी है और कुछ भी है जो आप एनालाइज भी कर सकते हो तो जरा गौर फरमाए। एनकेट से ही द बरूम द नैन्सी अस्टोर तेह विंस्टन चर्चिल जी द बिकेंड लेडर ओइट फन नीदरलैंड। En Nancy zei tegen Churchill, als ik met u getrouwd was, zou ik gif in uw eten doen. Daarna antwoordde Churchill glimlachend en zei tegen Nancy, en als ik met u getrouwd was, zou ik het opeten. Agenkaisri Elisa Laurillard. Oh, je kan raken het geloof, en deze moeten jullie zeker onthouden hoor, zelfs eentje om in te lezen. Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan. Ai, wat ze met je mee. Herman Vinkers snikhaai, hoe wilt u geknipt worden, vroeg de kapster mij. Ik zei... Topless. हम लोगों का अपना महाज्ञानी श्री बापू जी ने कुछ कहा है। इंडियाज फ्रीहेड स्ट्रेडर एडवोकेट एंड प्रैक्टिसिंग पूज्य बापू जी ने कहा है यारों कि द आर्द बीत voldoende om ieders behoefte te bevredigen, maar niet ieders hebzucht. Ook een hele goede. भगवान जी ने कहा है साथियों कि हाथ dragendheid is als het oppakken van een gloeiende kool om naar iemand te werpen. Je brandt slechts jezelf. Ook eentje om te onthouden. Nog eentje van Boeddha Bhagwan ji kahaa hai ki wacht niet op bijzondere momenten, maar maak de gewone momenten bijzonder ook goed. Socrates nekaha hai, onwetendheid is de bron van alle kwaad. George Herbert nekaha hai, saatjo, in de rechtszaal van het geweten wordt doorlopend zitting gehouden. En de laatste van vanavond, Kaisri Herman Vinkers, Jinek. Oh, je kan raken, soms denk ik uren na en heb ik nog niks op papier. Een andere keer bereik ik precies datzelfde in 5 minuten. Zat je bij jou kuch gyan ke baate sune, jo hamare kuch vidwano ne lik lik kar, kuch hai kuch bhagwan ke pyare ho gaya. Ye yash humein lekar in baato ko main aap sabhi tak pahunchaya ki in baato se kuch na kuch sun sun kar hum log hamesha की तरह जरूर सीखते ही रहेंगे। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। एक जबरदस्त सॉन्ग है, बिल्कुल पुराना सॉन्ग है, 1948 की फिल्म अनोखा प्यार। लता जी लाखों करोड़ का दिल चुराने वाला दमाई थी मुकेश, और लता जी के बहना मीना कपूर जी के ये तीन आवाजों में ये अति सुंदर बयान आप सुनेंगे। अल्फाज़े हैं जिया सरहादी और संगीतकार अनिल विश्वास के साथ, पर ये अति सुंदर बयान को कंपोज किया गया है, याद रखना चांद तारों।

Beautiful song, Bhoti Purana Nagma uit de film Anokha Pyar 1948. Us zamane ka great music director Anil Biswas ji ka banaya hua. Ye meetha dhun aur awaze the Meena Kapoor, Lata ji aur Mukesh ji ka. 14 मिनट रह गया है 9 बजने में साथ है और आप चुन हैं आप ही का मनचाहा रेडियो स्टेशन पर दनहाक्षर का फाहुन हिंदुस्तानी पर बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम गीत और गजल ओल्ड दिस गोल्ड संगीतकार का दासा नामक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और कुछ पुराने नगमे मैं सेलेक्ट किया हूँ आप सभी के खातिरी यही उम्मीद लेकर के आज का सिलेक्शन भी आप सभी को जरूर पसंद आता होगा. अगला बयान एक और जबरदस्त सॉन्ग है और एक बार फिर लाते हैं प्रोग्राम में भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी का ये सुपर हिट सॉन्ग कंपोज एंड अरेंज्ड बाय मास्टर आर डी बर्मन एक फिल्म लाखों में एक.

Evil song Sunaya Sibiko, Bharat Ratna Queen of Melody Lata Mangeshkar Ji, the film Lakho Me, a composed and arranged by R.D. Burman. नौमृत रह गया है नौ बजने में साथियों. अगला बयान है किसी जमाने में लता जी और ग्रेट सिंगर अग्रयार नेक तक विनोद राठौर ने मिलकर ये अति सुंदर मजेदार सॉन्ग को रिकॉर्ड किए थे, लेकिन किसी कारण निकाला नहीं गया, तो अभी निकाला है तो मिलकर सुनते हैं. कुछ मजेदार है, कुछ इस जमाने के संगीत है, तो जरा ज़रूर इस पे आप ध्यान दें.

0: ब्यूटीफुल सॉन्ग है। इस जमाने के संगीत और मिला दिया उस जमाने में लता जी और विनोद राठौर जी ने मिलके अति सुंदर बयान को रिकॉर्ड किए थे, लेकिन निकाला नहीं गया था। कुछ दिन हुए हैं निकाल कर धर दिए हैं सब यूट्यूब में, और इसलिए मैं सोचा आप सभी को भी सुना दूं। तो साथियों यही तक था हमारा पहला अध्याय ओल्ड इज गोल्ड गीत और गजल का, जो खास करके कुछ पुराने पुराने नगमे थे। और ब्रेक के बाद आप सुनेंगे सिर्फ वो नगमे जिन फिल्मों में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर धर्मेंद्र जी ने काम किया है। 5 मिनट रह गया है 9 बजने में, तो अभी आप विज्ञापन सुनिए, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहून हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूँ, कहीं जाना मत।
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर्स जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। एंड आई थिंक वेलक से बॉयज एंड गर्ल्स सलोबियो लोबियम ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड आई थिंक बुदंत फॉर हेथ लाइस्ट्रेन। दो मिनट गुजरने वाला है 9:00 और आप चुन है आप ही का हैप्पी स्टेशन देन हाफ्टर का द वन एंड ओनली फाउन हिंदुस्तानी रेडियो 24 आवर्स एट योर सर्विस मी गुरु। तो जो भी रेडियो का काम हो खास फरमाई से इस तिहारे जरूरी खबरें देंक अन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। किफायत सस्ते राउंड सर्विस ग्रांट और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश होना अब मात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता अवल और सस्ता पता आप सभी को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा साथियों। अब आजमा कर तो देख सभी जानकारी बेल टेरेंस कंटोर यूरो फन मांडा tot vrijdag op de volgende telefoonnummers: kantoor 070-365-2047 uit Studio Katarka nummer 070-362-2077. Jo bhi radio ka kaam hona, denk aan Fahun Hindustani Radio. Je bent van harte welkom. Isi tarah hum logo ke bare mein चर्चा करते रहना, रिक्लाम बनाते रहना साथियों, अगर हो सके तो थोड़ा बहुत धन ढोड़ा भी पी देना, क्योंकि आप लोग है तो हम लोग भी है ना। और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बीती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने और को भी बनाए, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। एंड वी हैव ओक ऑन से एक कराओक टीम फ्रॉम फाउन हिंदुस्तानी रेडियो वार स्टक ऑफ 8 सिंगर्स एंड सिंगरेस अलमाल ओमरूपर्स फ्रॉम फाउन हिंदुस्तानी रेडियो मेडून जोर तोर से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और वी हैव ऑल इन पार के जस्ट ऑपरेटर और एंड इट इज गुड बफाला। तो volg onze social media's en ook van onze omroepers. Dan hoort u zeker waar wij binnenkort gaan optreden en dan bent u ook van harte welkom. तो अभी जो इस फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का छोटा और मोटा सा बड़ा परिवार बनते जा रहा है, आप भी आकर उसमें शामिल हो सकते हैं। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें टेरेंस कंटोर यूरो ऑप 070-365-2047। दा वर्ट यू डायरेक्ट स्ट्रीक्स वर्बोंडन आर ऑन्स टीम लीडर द वन एंड ओनली माएस्ट्रो जॉनी नंबर वन। तो आप भी हम लोगों का मेंबर बने और को भी बनाए, फन हार्ट वेलकम। वरा के मुताबिक एक ही दम लेकर चलते हैं आप सभी को प्रोग्राम की तरफ। बीते हुए हफ्ते हम लोग पहुंच चुके थे फिल्म लोफर तक और इस फिल्म में धर्मेंद्र जी ने काम किया है, मुमताज जी के साथ ओम प्रकाश प्रेमनाथ और कायन सिंह भी इस फिल्म में काम किया है। सभी गाने, एक गाना रह गया था और सुनाने को इस फिल्म का, जो मैं तुरंत आप सभी को सुनाने वाला हूँ। प्लेयर में तो रख चुका हूं यारो, फ्रॉम द मूवी लोफर 1973 और आ रहे है प्रोग्राम में शुरू का बादशाह और पद्मश्री महेंद्र कपूर जी, आनंद बख्शी के अल्फाजे, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ एक भक्ति नगमा है कि दुनिया में तेरा है बड़ा नाम। मिलके सुनते हैं।

द ग्रेट महेंद्र कपूर जी के ब्यूटीफुल आवाज में आप श्रोताओं ने अति सुंदर भक्ति सॉन्ग सुन रहे थे। आई द फिल्म लोफर 1973 gecomponeerd door Mahan Sangeet Kaar Jodi tha Lakshmikant Pyare Lal aur Alfazi tha Anand Bakshi ji ka। 9 minute guzar chuka hai 9 bajkar saathiyo to sabhi sabhi nagme film Lofer ka aap sun chuke। अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक जबरदस्त मूवी जो रिलीज किया गया था उसो एक दिन द्रियन सीमन तक में फिल्म झील के उस पार। और इस फिल्म में धर्मेंद्र जी ने काम किया है मलकाए हुस्न एक बार फिर दिखाए मुमताज जी के साथ। जोगीता बली बाली जी इस फिल्म में भी काम किया और प्राण भी इस फिल्म में कुछ रोल अदा किए हैं। महान संगीतकार राहुल देव बर्मन के साथ है और अल्फाज है गाने के मास्टरो आनंद बख्शी जी का। तो फिल्म झील के उस पार से आप नगमे अब सुनेंगे। अगला बयान सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को एक बार फिर लाते हैं प्रोग्राम में संगीतकारों और सभी म्यूजिशियन जो है ना हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का उनका सरदार था किशोर दा। ये भी आप सभी को मालूम होना चाहिए कि क्या वो नहीं थे गायक लेखक म्यूजिक डायरेक्टर फिल्म डायरेक्टर कंपोजर कॉमेडियन तो फिर हम उपतनुमा तो संगीतकारों का शहंशाह और बादशाह वन एंड ओनली एक बार फिर किशोर दा के ब्यूटीफुल आवाज में आप सुनिए ये अति सुंदर बयान क्या जोड़ी था आरडी बर्मन और किशोर दा का। कितने सुपरहिट सॉन्ग्स ये दोनों मिलकर हम लोग के लिए तैयार किया वार फन ओक इन फन देश न्यूमरस ओक एन हेल खुई और फिल्म झील के उस पार।

हसीनो का पुजारी किशोरदा अपने ही अंदाज में आप सभी को सुनाया एड फिल्म झील के उस पार नेहदिंग ड्रियन सिंह तक कंपोज एंड अरेंज बाय मैस्ट्रो आर डी बर्मन और अल्फाजे था आनंद बख्शी जी का। 16 मिनट गुजर चुका है साथियों, 9 बजकर और आप सुन रहे हैं गीत और गजल ओत इस गोत नामक कार्यक्रम। नगमे चल रहे जिन फिल्मों में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर धर्मेंद्र जी ने काम किया है और हम पहुंच चुके हैं फिल्म झील के उस पार तक जो रिलीज किया गया था इन एक दिन द्रियन सेव द। अगला बयान लता जी ऑफ हार्वेस्ट आनंद बख्शी के अल्फाज़े आर डी बर्मन के साथ एड फिल्म झील के उस पार। और इस बार आप तो सुन चुके ना भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी, दो घूंट मुझे भी पिला दे भाई।

शराब के शक्ति के दो घूट हमें पिलाए तो देखो फिर क्या द क्राफ्ट फन अल्कोहल खैरान सी ने और ड्रंक खैरार दिंगे तो इसकी नो कोई खुगे दिंगे और घूट मुझे पिला दे एक फिल्म झील के उस पार सुनाए आप सभी को भारत रत्न क्वीन ऑफ मेरी लता जी रह गया है 9:30 बजने में साथियों अगला बयान एक जबरदस्त सॉन्ग है एक बार फिर भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता जी ऑफ हर बेस्ट एड फिल्म झील के उस पार आर डी बर्मन के साथ आनंद बख्शी के अल्फाज चल चले ए दिल

from the movie Jail Ke Us Paar, title song 1973, composed and arranged by R.D. Burman, Fazete, Anand Bakshi ji ka, Queen of Mary, Lata Mangeshkar ji ki awaaz mein. एक बार फिर लता जी के ब्यूटीफुल आवाज में मेरे नेमर्स एडिस फिल्म में से एक सॉन्ग दिस एट से सो लेकिन एक जबरदस्त सॉन्ग है दिल को थाम लीजिए और दर्द से भरा हुआ बयान कह रहे हैं ये आंसू कंपोज्ड बाय आर डी बर्मन और अल्फाज़े आनंद बख्शी जी का लता जी के ब्यूटीफुल आवाज में

क्या बात है, दिल को छू लेने वाला नगमा सुनाई आप सभी को क्वीन ऑफ मेलोडी भारत रत्न लता मंगेशकर जी आई डू फिल्म झील के उस पार कॉम्पोनेट और आदि बर्मन और फाजे था आनंद बख्शी जी का। एक मिनट गुजर चुका है 9:30 साथियों, अगला बयान और वो भी आखिरी बयान है आइड फिल्म झील के उस पार। और इस बार द क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री आशा भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज में यह अति सुंदर बयान कॉम्पोनेट और आर डी बर्मन और एक बार फिर अल्फाजे है आनंद बख्शी जी का। हाय बिछुआ डस गयो रे।

क्या बात है, हाय बिच्छुआ डस गए रे। सुना रही थी आप सभी को क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, द वन एंड ओनली आशा भोसले जी, कंपोज एंड अरेंज बाय माएस्ट्रो। क्या बात है, दो महान संगीतकार और एक जोड़ी द ग्रेट लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ और आनंद बख्शी की अल्फाजें। तो साथियों, वो था भी आखिरी बयान एड फिल्म झील के उस पार। 6 मिनट गुजर चुका है 9:30, तो वक्त हो गया ना कुछ शेर शायरी हो जाए हमारे शेर्स के चाहने वालों के लिए। कुछ दो लाइन शेर शायरी है यारो, ये तो खूबी है दो लाइन शेर शायरी का कि कितने कम लफ्जों में लोग पूरे कहानियां सुना देते हैं। जरा गौर फरमाए, अर्ज किया है यारो कि अजब तेरी है महबूब सूरत, नजर से गिर गया सब खूबसूरत। अजब तेरी है महबूब सूरत, नजर से गिर गया सब खूबसूरत।

सूरतों को सवारने की जरूरत क्या है? अच्छी सूरतों को सवारने की जरूरत क्या है? सादगी में बेकयामत की अदा होती है। महफिल में तुम्हारे आने से हर चीज पर नूर आ जाता है। तुम हुस्न की खुद एक दुनिया हो, शायद ये तुम्हें भी मालूम।

नहीं है खास इन दिनों में, कुछ भी नहीं है खास इन दिनों में, तू ही नहीं है पास इन दिनों में। हम तो फना हो गए उनकी आंखें देख कर खालिब, हम तो फना हो गए उनकी आंखें देख कर खालिब, ना जाने वो आईना कैसे देखते होंगे। हुस्न आफत नहीं तो फिर क्या है, हुस्न आफत नहीं तो फिर क्या है, तू कयामत नहीं तो फिर क्या है। ये था कुछ दो लाइंस शेर शायरी यश, उम्मीद है आगे के प्रोग्राम में मैं कुछ सुनाऊंगा, तो जरा प्रोग्राम को जरूर सुनते रहना। साथियों सभी नगमे झील के उस पार हमने आप सभी को सुना चुका हूं, अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक मूवी जो ऑल्सो रिलीज किया गया था 1973 में, एंड मूवी में एक बिसोंद्र नाम रहा, सिर्फ फिल्म का नाम ज्वार भाटा 1973 में रिलीज किया गया था। और इस फिल्म में धर्मेंद्र जी ने काम किया है, क्या बात है, मलका है हुस्न, द ब्यूटी क्वीन शायरा बानो जी के साथ रजेंद्र नाथ भी इस फिल्म में काम किए है, और सभी गाने लिखा है राजेंद्र कृष्ण जी, संगीतकार जोड़ी है लक्ष्मीकांत प्यारे लाओ जी का। फिल्म ज्वार भाटा में से आप नगमे सुनेंगे, एक जबरदस्त मजेदार सॉन्ग मैं रख चुका हूं आप सभी को सुनाने के लिए, और लाते हैं एक बार संगीतकारों का शहंशाह और बादशाह द वन एंड ओनली की शोरदा एक बार फिर प्रोग्राम में, और वो सुनाते हैं आप सभी को तुरु रुरु तुरु रुरु तेरा मेरा प्यार सुरु।

0: टुरुरुरु तेरा मेरा प्यार शुरू कह रहा था किशोर दा, आप सभी से आई द फिल्म ज्वार भाटा कंपोज बाय द ग्रेट संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। धीरे धीरे 16 मिनट रह गया है 10 बजने में साथियों, अगला व्यायाम की तरफ बढ़ते हैं और इस बार जरा कान में तेल डालकर सुनिए ये अति सुंदर बयान को कि दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। कह रहा है आप सभी से भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता जी और साथ दे रहा है किशोर दा।
1: समझो और समझाओ

From the movie Jwar Bhata uit 1973, Lakshmikant Pyarelal ke saaj par aap shrutaon bhi sun rahe the yati sundar bayan hai, jo khas karke Lata ji aur Kishore da ke awaz mein the. 10 मिनट रह गया है साथियों, 10 बजने में वक्त है तेज सो स्नेल आशीर में इस बैंड के अक्टर द क्नोपन. लेकिन उससे पहले ये अति सुंदर बयान आप सभी को मैं सुनाने वाला हूँ एक बार फिर. आई द फिल्म ज्वार भाटा 1973, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ पर आप सुनिए एक बार फिर Queen of Rock and Roll from the Bollywood film industry, the one and only Asha Bhosle ji. Honton pe tera naam.

अभी सुन रहे थे होंठों पे तेरा नाम ज्वार भाटा इज द मूवीज नेम, और सुनाने वाली थी आप सभी को आशा भोसले जी।

फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाउंड के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 7 2 2 6 9 8। फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो।

मधुबन के हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 6 20 6 9 8 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का बुधवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। 12 अगस्त 2020 का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड नामक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। एनातिलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स ससलोबी लोबी ऑन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एनातिलक बिनंत फॉर हेड लाइस्ट्रन। जो भी रेडियो का काम हो खास फरमाइश से जरूरी खबरें इस तिहारे डैंक ऑन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो की फाइट सस्ते दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी स्टार बाय ऑन्स ऑफ द एस्ट प्लान। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें तijdens kantooruren van maandag tot vrijdag op de volgende telefoonnummers: kantoor 070-365-2247 en studio Katarka nummer 070-323-2077. Denk aan Fahon Hindustani Radio. U bent van harte welkom. इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना, रेक्लाम बनाते रहना और इसके लिए हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू और फुल टीम की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। Recent hebben we ook onze eigen karaoke teamclub. Ja, recent niet hoor. Het is al bijna meer dan een jaar zijn we al bezig met oefenen. En natuurlijk een paar keer hebben we ook al opgetreden. Volg onze social media en ook van de omroepers. Dan hoort u heel zeker, zeer zeker wanneer u live kan verrassen met een paar optredens. En dan bent u ook van harte welkom. Abhi is chota sa mota sa Fahon Hindustani Radio ka parivar jo bante ja rahe hai. Aap bhi aakar usme shamil ho jaye. Sabhi jankari iske bare mein aap taar kare op 070-365-2247 tijdens kantooruren. Dan wordt u automatisch doorverbonden naar onze teamleider, the one and the only maestro Johnny number 1. बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ। कुछ नेक में रह गया है सुनाने को फिल्म ज्वार भाटा और ये भी इस तरह से है साथियों की पीने की देर है ना पिलाने की कहने वाली है आप सभी से सभी को क्वीन ऑफ मेलोडी आशा भोसले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज राजेंद्र कृष्ण के अल्फाजे।

बयान श्रोताओं के सेवा में पेश किया गया uit de film Jawar Bhatta uit 1973, Queen of Rock and Roll, Asha Bhosle ki awaaz mein aap sun rahe the, Lakshmikant Pyare Lal ke saath pariye thi sundar bayan. 14 minute guzar gaya hai saathiyo, 10 bajkar waqt bhi dheere dheere kareeb aa raha hai. एक आखिरी बयान है जो फिल्म ज्वार भाटा आप सुनेंगे, रूठा है तो मना लेंगे, और ये कहने वाली है आप सभी से भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के सांझ पर अल्फाजे पे जरूर ध्यान देना.

बयान आप श्रोताओं अभी सुन रहे थे, और वो भी भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता जी के आवाज में। तो साथियों, वक्त हो गया कुछ आखिरी शेयर्स हो जाए ना हमारे शेयर्स के जाने वाले। अर्ज किया है यारो, कहां से लाऊं वो लफ्ज जो तुझे सुनाई दे, कहां से लाऊं वो लफ्ज जो तुझे सुनाई दे,

इंसान से वाकिफ है रब, फितरत ए इंसान से वाकिफ है रब, इसलिए सबको सब कुछ नहीं मिलता। देखकर आपके मुस्कुराहट हम होश गवा बैठे, देखकर आपकी मुस्कुराहट हम होश गवा बैठे, हम होश में ही आने वाले थे, आप फिर से मुस्कुरा बैठे। नामी फ्लावबा का। सब कहते हैं कि चांद का टुकड़ा है तू, सब कहते हैं कि चांद का टुकड़ा है तू, मेरी नजर से देख चांद भी तेरा टुकड़ा लगेगी। अपनी निगाहों से ना देख खुद को, अपनी निगाहों से ना देख खुद को, हीरा भी तुझे पत्थर लगेगी।

मैं तो मौजूद हूँ उन रातों में उजालों की तरह, मैं तो मौजूद हूँ रातों में उजालों की तरह, तुमने ढूंढा ही नहीं, तुमने ढूंढा ही नहीं, ढूंढ वालों ढूंढने वालों की तरह। क्या बात है, ये था कुछ दो लाइन शेर शायरी ये शाह है। उम्मीद है कि आप सभी को ये दो लाइनें जो मैंने सुनाया आप तक जरूर पहुंचे होंगे। तो धीरे धीरे वक्त भी करीब आ रहा है साथियों, सभी गाना फिल्म ज्वार भाटा का मैं आप सभी को सुना चुका हूं। अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक जबरदस्त मूवी जो रिलीज किया गया था इन 1974 तक में, फिल्म रेशम की डोरी, कुछ भाई बहन के कहानी के बारे में ये फिल्म चला है और काफी नाम कमाया था हमारे सूरीनाम देश में। तो उसी फिल्म में से ये अति सुंदर बयान आप सुनिए और साथ ही साथ ये मेरे हिस्से का कार्यक्रम में आखिरी सॉन्ग रहेगा। सुनने वाली है आप सभी को, सभी कोई तो सोच रहे होंगे कि ये नगमा लता जी ने गाया, लेकिन असल में सुमन कल्याणपुर जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये थी सुंदर बयान। आप सुनिए, मजे लीजिए, शंकर जय किशन के साज है और अल्फाजे पे जरूर ध्यान देना, महान लेखक इन दीवर जी का है। बहना ने भाई के कलाई से रक्षाबंधन भी आने वाला, लेने को जरूर याद रखना।

देवताओं के शिव में पेश किया गया एड फिल्म रेशम की डोरी, जो रिलीज किया गया था 1964 तक में। और इस फिल्म में धर्मेंद्र जी ने काम किया है मलकाय हुस्न रिगड़े शेरा बानो जी के साथ, और साथ तेरे ही भी इस फिल्म में भी बहन के रोल में अदा की है कुमत चुगानी जी। सुंदर बयान सुमन कल्याणपुर जी के ब्यूटीफुल आवाज में शंकर जय किशन के साथ और इंदिवर जी के अल्फाज। तो साथियों, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि आने वाले फ्राइडे 28 अगस्त को बड़े समारोह के साथ रक्षाबंधन मनाया जाएगा। फादर्स ऑफ Vrijdag 28 augustus. Wordt in India gevierd natuurlijk. En hier is het dan, als het in India al gevierd wordt, is het hier nog donderdag 27 augustus. Dus daarvoor yaad rakhna apne bhai behen ka pyaar hai jo hamesha hum log manate hain saal mein ek baar, lekin mere khayal se भाई बहन का प्यार तो इतना अमर है और इतना महान है कि लोग तो साल में एक बार मनाते हैं, और दुनिया में तो लोग एक दिन अपन बहन के या अपन भाई के ना देखेगा तब उस सब के कुछ हो जाए कि रोज सोशल मीडिया के जरिए या आस पास में भी रहते हैं भाई बहन, एक एरफ पर भी, एक घर में भी कितने परिवार भाई बहन के साथ अभी तक रहते हैं भारत देश में। एनोख कॉम्ट ओक नोख स्टेज इन सूरीनाम से हिंदुस्तान से गजेन नोख फोर। तो दोस्तों, यही तक था आज का मेरे हिस्से का कार्यक्रम जो समाप्त होने को आया। यश उम्मीद लेकर घर को जा रहा हूँ यारों, कि जिस तौर तरीके से मैं कोशिश किया आप श्रोताओं को सेवा करने में, यश उम्मीद है कि मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया हुआ होगा। अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले रविवार शाम 5 बजे में आप सभी से फिर मिलने वाला हूँ सरनामी संगीत लेकर। तो मुझे आप सभी इजाजत दे, हमारे बात आप सुनिए कुछ अनाउंसर साथियों को, और मेरे ख्याल से 11 बजे के बाद आप सुनेंगे एक हेरहालिंग फनत फना फमिडक प्रेजेंटेड न्यूज दौर से एयरवार्ड ब्रूडर और जर्नलिस्ट एंड कॉरेस्पोंडेंट फन फाउन हिंदुस्तानी रेडियो मायस्ट्रो रोमियो होस्ट के जरिए। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना, मुझे आप सभी इजाजत दे, और जाते जाते हमेशा की तरह कुछ न कुछ गुनगुना देता हूँ। और आज है एक अति सुंदर बयान खास करके दादा हेमंत कुमार के याद में, आप ये नगमा जरूर सुनिए। तो आप सभी को एक शुभ रात्रि, बाय बाय, श्वाय श्वाय, सोसलोबी लोबी ऑन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड अदर लाइक बदंत फॉर हेट लाइस्टरन।

तो आप कार्यक्रम में हैं जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है BBB.FM.NL पर। चलिए कार्यक्रम में हम चलाते हैं, या ख्याल है अगर मैं आपको ये सुनाऊं, इस तरह से आ रहा है।

तुमको हमसे प्यार है, किस तरह से प्यार किया जाता है, यही कुमार सानू और अलका याग्निक आपको सुनाए हैं। अब प्यार की सिलसिला अगर है ही है तो हम आपको बताते हैं कि प्यार कैसे किया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जी हाँ, ये उदित नारायण कह रहा है फिल्म मोहरा में कि सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक और वगैरह वगैरह कैसे प्यार किया जाता है। चलो इन्हीं लोग से सुनते हैं, क्यों, क्योंकि ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों को प्यार करना नहीं आता, तो सीख लेते हैं कुछ भी।

अच्छा, हमने भी सीख लिए कि प्यार कैसे किया जाता है। उम्मीद है आप भी सीख गए होंगे, और अगर आप जानकारी थे नहीं सीखे हैं तो कोई बात नहीं है। चाहे अगर प्यार की बातें तो हम आपको एक बार फिर सुनाते हैं कि देखते हैं इस तरह से।

फिल्म गुमनाम में से निकाले हैं। ये नया गुमनाम है, ये मनोज कुमार के डरावनी गुमनाम नहीं है, ये नया गुमनाम है। इसमें उदित नारायण और श्रेया घोषाल मिल के आपको ये गीत सुनाए हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में।

अगला गीत, जी हाँ अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, क्या ख्याल है, अराउंड द वर्ल्ड, जी हाँ, मैत मुकेश और शारदा जी।

मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस शारदा जी के साथ अराउंड द वर्ल्ड में से निकाले हैं शंकर जय किशन के साज पर ये शानदार गीत, प्यारा गीत हमने पेश की। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो चलिए हम आपको ये सुनाते हैं। क्या ख्याल है, सुन लीजिए इस तरह से।

सदा रहे हैं, सदा रहेगी, रफ़ी साहब ने अपने प्यार का इजहार की। इस तरह से फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने ये गीत चलाए हैं। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं। जी हाँ, चलो सुनते हैं कि चाहे दिन हो या रात हो, अगर तुम रात कहोगे तो हम रात की कहेंगे, अगर जो दिन कहो तो हम भी दिन कहेंगे।

हाँ, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे और कोई बात ही नहीं करेंगे। अगर कहो दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। बहरहाल ये गीत सुना आपने माइक मुकेश की आवाज में। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं इस तरह से।

0: रूप तेरा मस्ताना, ये शानदार गीत चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में www.faunfm.nl पर आप चून हैं। जो लोग चून की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। इंटरनेट रेडियो या वीफी रेडियो पर आप चून हैं, तो जहाँ भी आप होंगे, जो भी कर रहे होंगे, आप सबका हृदय से स्वागत है। आपका स्वागत करते हुए, तो क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये गीत सुनाऊं? दरअसल में ये गीत हमने चून भी नहीं किए, तो मुझे भी नहीं पता इस गीत के बारे में। और बहुत दिन हुए हमने टेक्स्ट पढ़े हैं, लेकिन हम जान नहीं पाते ये गीत कौन सा है। तो हो सकता है शायद आपको पता हो, चलो साथ मिलकर सुनते हैं। हाँ, इतना तो पता है कि माइट मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस।
1: अरे गौरी, अरे गौरी, तुम हवा में कैसे पहुंच गई? अरे मैं कुछ करता हूँ, जरा ठहरो तुम। फिक्र मत करो, हम तुम्हें अपनी बाहों में उठा के ले चलेंगे।
2: तुम तो उठा लोगे, लेकिन गांव वाले क्या कहेंगे?
1: अरे गांव वाले क्या कहेंगे, यही कि चंदन अपनी होने वाली दुल्हन को अपनी बाहों में लिए घूम रहा है।
2: छोड़ दे मुझे, हट बेईमान कहीं का।
1: अरे

माइती मुकेश, माइती मुकेश और साथी मैं आशा जी आपको मिल के सुनाए हैं यह गीत और हमने पेश की फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। महेंद्र कपूर जी, चलो सुनते हैं आपको क्या सुना रहा है।

जब याद किसी की आती है, पद्मश्री महेंद्र कपूर की आवाज़ में हम आपको सुनाएं ये शानदार गीत फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में है। चलिए, कार्यक्रम में आप भी हैं, मैं भी हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, तो क्या ख्याल अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ, इस तरह से आ रहा है।

दिल में किसी के प्यार का लता जी की आवाज में सुनाया गया, जबकि आप उपस्थित हैं। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर चून है, चून करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप कार्यक्रम भी सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, हमने चून कर ये गीत रखे हैं। जी हाँ, बस आ रहा है ये शानदार गीत इस तरह से।

मैं थी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी साथ दी और शानदार गीत हमने पेश की, जबकि आप भी हैं, मैं भी हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपके आपके लिए हमने गीत ये रखे हैं, क्या ख्याल है, बस इत्मीनान से ये लवली गीत सुनिए।

रफ़ी साहब और शारदा जी मिलके आपको ये द्वैत सुनाएं जब भी ये दिल उदास होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि राज कपूर ने कहा कि राधा आज सिर्फ गाएगी भी नहीं लेकिन नाचेगी भी, तो आप सोच सकते हैं मैं कौन सा गीत चलाने वाला हूँ, और नहीं सोचे होंगे तो इस तरह से आ रहा है शंकर जय किशन के साथ पर।

माइती मुकेश जी और लता जी ये दोनों मिलके फिल्म संगम में से सुनाए हैं आपको ये शानदार गीत शंकर जयकिशन के साथ। पर कहा जाता है ये पहला फिल्म था जो देश से बाहर बना संगम, लेकिन मुझे इस पक्का पता नहीं है क्योंकि मैं दुविधा में हूँ। सिंगापुर बना था शमी कपूर का या राज कपूर का संगम, बहरहाल ये गीत हमने चलाए हैं ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। फिल्म मुद्दत में से निकाले हैं जी हाँ, आशा जी और मोहम्मद अजीज़।

फिल्म मुद्दत में से निकाले हैं आशा जी और मोहम्मद अजीज जी। जब मैं कहूँ बूंद जो बन गई मोती निगदी सेफ न सस्त, मैत मुकेश और सुमन कल्याणपुर जी, तो क्या ख्याल है अगर ये गीत मैं आपको सुनाऊँ इस तरह से।

मैंने भी प्यार किया, मैथ मुकेश और सुमन कल्याणपुर जी आपको सुनाए हैं। जी हाँ, आप चुन है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, आप सबको हृदय से स्वागत है। आपका स्वागत करते हुए चलिए हम आपको सुना रहे हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

गीता राय जी और आशा जी मिलके आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। और गीत हमने निकाले हैं निकली फाइव तक से ओपन एयर के साज पर और पेश किए ये शानदार गीत। आपको एक बात बता दूं, शायद आपको अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, लेकिन फिर भी बता देते हैं। उस समय मैं 7 साल का था, जिंदगी में पहली बार ये फिल्म हमने देखे हैं थिएटर में। वैसे तो रे 81 साल में देखे हैं, लेकिन थिएटर में पहली बार गए हैं थिएटर लुक्सोर में गए ये फिल्म को देखने। बहुत अच्छा लगा था थिएटर में बैठ के, एक कुर्सी पर अच्छा लगा था। वैसे तो बांगी पर बैठ कर देखते थे। बहरहाल ये गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो।

Mighty Mukesh is the heart of millions. फिल्म सुनहरा संसार में से निकाले हैं नेकदी फैफिन सैफिन तक नौशाद अली के साज पर। और लता जी

लता जी और मैं तू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं फिल्म सुनहरा संसार में से निकाल कर 1975 का ये गीत नौशाद अली के साज पर हमने चलाए हैं। चलिए अगला गीत क्या ख्याल है, शाम का वक्त है तो लीजिए इस तरह से।

देखती हूँ जिधर आशा जी। जी हाँ आशा जी फिल्म हांगकांग में से निकाले हैं निगेटिन ट्विन शस्त्र और ओपेन नैयर के साथ पर हमने चलाए हैं। चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं, जब आप भी हैं और मैं भी हूँ तो क्या ख्याल है।

कारण कैसे हो मुकेश जी और लता जी मिलके आपको सुनाएं मदन मोहन के साज पर। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुनाऊं, महेंद्र कपूर जी, फिल्म का नाम है सम्राट, संगीत सम्राट तानसेन। जी हाँ, फिल्म का नाम है संगीत सम्राट तानसेन, फिल्म का नाम है निगेटिव ट्विन, शस्त्र से हम निकाले हैं। इस तरह से हम आपको सुनाते हैं।

मेरी दुनिया है मेरी, महेंद्र कपूर जी और लता जी आपको सुनाए ये शानदार गीत। और फिल्म निकली तो ऐसे कहाँ देखते हैं संगीत सम्राट तानसेन के साज फिल्म संगीत सम्राट तानसेन में से निकाल कर हमने पेश किए कल्याण जी आनंद जी के साज पर ये गीत था। चलिए अगला गीत है हम चलाने वाले हैं आपके लिए, बस आप ही हैं मैं भी हूँ, आप सुन रहे हैं मैं चला रहा हूँ, तो क्या ख्याल अगर ये आपको ये सुनाऊँ इस तरह से। अच्छा जी और रफी

इजाज़त हो तो सुना दूँ। ये गीत चला ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, आशा जी और रफ़ी जी ने आपको मिल के सुनाए। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, देखते हैं द मैन विद द गोल्डन वॉइस, द मैन विद द गोल्डन वॉइस क्या ख्याल है।

एवरग्रीन, जी नहीं एवरग्रीन नहीं, लेकिन द मैन विद द गोल्डन वॉइस, तलत साहब ने आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की। जब आप भी हैं मैं भी हूँ तो क्या ख्याल है, ये गीत तो आप बहुत बार सुन चुके हैं, लेकिन आज के कार्यक्रम में फिर भी मैं चला रहा हूँ फिल्म अनुपमा में से निकाल कर नेहा तीन सेस्तक और हेमंत कुमार के साज है लता जी है।

0: तुम्हारे
1: उठो ना, गाओ।
0: चलो मुँह हाथ धो लो, याद नहीं दावत पे जाने।
1: अभी तो बहुत वक्त है, उम्मीद से ज्यादा मिल जाए तो ऐसा मालूम होता है

धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार फिल्म अनुपमा में से निकाले हैं हेमंत कुमार के साथ पर लता जी ने पेश की। और निगेटिव सेंसेस का ये फिल्म 1966 का ये फिल्म है। चलिए जहाँ आप भी हैं मैं भी हूँ तो आपको हम क्या सुनाते हैं। ये गीत हमने चुन की है लेकिन हमने सुना नहीं, किशोर कुमार जी आपको सुना रहा है। फिल्म है देखते हैं संसार में से निकालते हैं चित्रगुप्त के साज पर। क्या ख्याल है एवरग्रीन किशोर कुमार?

हाँ, हाथों में किताब, बालों में गुलाब, जबरदस्ती की प्यार, हम आपको सुनाए हैं ये चटपटा चुटकुला गीत। एवरग्रीन किशोर कुमार ने आपको सुनाए हैं वो फरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो। अगर ये आपको किसी से प्यार है और आप उनके आँखों की तारीफ करना चाहते हो और आपको नहीं पता है कि उनके आँखों की तारीफ कैसे किया जाए, तो चलिए हम आपको सुनाते हैं। मैं आपको सुनाता हूँ, रफ़ी साहब सुनाता है आपको इस तरह से। मदन मोहन के चार साज पर फिल्म चिराग में से निकाल कर निगति निघ्न शस्त्र 1969 का ये गीत।

तेरी आंखों के सिवा इस दुनिया में रखा किया है। रफ़ी साहब की आवाज़ में लता जी भी साथी और हम आपको सुनाए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं। ये बंदा जैसे रफ़ी साहब कभी शराब नहीं पीता था, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है किशोर कुमार जी भी शराब नहीं पीता था, लेकिन मुझे पता नहीं पक्का, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल वो भी शराब नहीं पीता था। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये गीत गाए हैं, एवरग्रीन किशोर कुमार, फिल्म कटी पतंग में से हम आपको सुना रहे हैं।

सागर सागर नया सागर कोई ले ले मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले।

एवरग्रीन किशोर कुमार ने आपको सुनाए हैं, ये शानदार गीत हमने पेश किए ओवर फाउंडिंग स्थानीय रेडियो, जी हाँ फिल्म कटी पतंग में से निकाल कर। चलिए माइट मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस इस तरह से

वाह क्या बात है लता जी। और माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं, फिल्म झूला में से निकाल कर ये शानदार गीत हमने पेश किए ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं और मैं भी सुन रहा हूँ और आप मैं चला रहा हूँ आप सुन रहे हैं, आप चुन है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर।

मेरा सनम सबसे प्यारा है, ये शानदार गीत चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में हमने पेश की। और ये था आशा जी और कुमार सानू, फिल्म है दिल का क्या कसूर, दिल का क्या कसूर में से निकाले हैं ये शानदार गीत हमने पेश किए। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है अगर ये आपको सुना दूँ।

जाने कैसा है मेरा दीवाना, या क्या बात है। आशा जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए फिल्म है आंसू बन गए फूल, उसी में से निकाल कर हमने पेश की ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो www.faunfm.nl पर। आप चुने जो लोग चुन के मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। आप चाहे जहाँ भी होंगे, दुनिया के जिस कोने में भी होंगे, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुन हैं। सुबह हो या शाम होगा, रात्रि होगी, पता नहीं कौन सा मौसम है, कौन सा दिन है, आपके जगह आपके जहाँ पर हैं, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए शुभकामना के साथ हम पेश कर रहे हैं ये गीत।

चम्मा बुझने को चली, ये गीत हम निकाले हैं, देखते हैं फिल्म मेरे ध्यान से निकल गया, चम्मा बुझने को चला, फिल्म गंगा की लहरें, हाँ गंगा की लहरें में से निकाले हैं रफ़ी साहब का ये गीत, हम आपको सुनाए हैं फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में।

संग मरमर से तराशा हुआ ये शोक बदन इतना दिलकश है कि अपनाने को जी चाहता है। सुर्ख होंठों में थिरकती है वो रंगीन शराब जिसको पी पी के बहक जाने को जी चाहता है, लेकिन इस हुस्न पे मर जाने को जी चाहता है। हमसे बेहतर है ये पाजेब जो इस पाँव में है, रख ले कल के लिए ये दूसरी पाजेब दिल, कल इसी बज्म में फिर आने को जी चाहता है।

इस रेशमी पाजेब की झनकार की सदके लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में ये शानदार गीत पेश किया गया उर्फ़ान हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं और मैं चला रहा हूँ। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं। क्या ख्याल है, शाम के वक्त है और आप भी हैं और मैं भी हूँ।

लता जी और मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म छाया में से निकाले हैं। निगित एन शस्त्र का ये फिल्म है और सलील चौधरी के साथ पर हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, जी हाँ, इस तरह से आ रहा है।

खाई रे हमने कसम हंस परदेसी। लता जी आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की। चलो एक गीत और हमने प्लेयर में रखे हैं लेकिन समय नहीं मिला कि ये गीत कौन सा है। हाँ ये तो पता है कि फिल्म बाबू का है, निकिता फैफन तख्त का है और आशा जी और किशोर कुमार जी ने गाए हैं और देखते हैं राजेश रोशन के साथ, ये सब पता है लेकिन गाना चलो मैं भी सुनता हूँ, उम्मीद है आप भी सुनोगे।

जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे। ये गीत चला ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। स्वागत करते हुए चलिए पेश कर रहे हैं ये गीत।

देखती हूँ जिधर, फिल्म हांगकांग में से। जी हाँ, फिल्म हांगकांग में से निकाले हैं ये शानदार गीत और हमने पेश किए ओपन एयर के साज पर निगतिन त्वेयन शस्त्र का ये फिल्म है आशा जी की आवाज़ में। चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं। ओ क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ इस तरह से।

सुन जा, ऐ घटा काली घटा, बस एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी हाथी मेरे साथी में से निकाले निगत ए ने सी तो का ये फिल्म लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। अगला गीत हमने प्लेयर में आपको पता है हमने क्या रखे हैं, चलो सुनते हैं कि लता जी, जी हाँ लता जी की क्या मुसीबत है, लता जी के समझ में कुछ नहीं आ रहा है, चलो सुनते हैं वो खुद कह रही है क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, चलो सुनते हैं। मजा ही आ रहा है या नहीं, इस बात की मजा आ रहा है नहीं पता।

0: तो आपने सुने लता जी ने आपसे कहें कि उन्हें कितना मज़ा आ रहा है, ये शानदार गीत हमने निकाले फिल्म राजा जानी में से नेक दिन त्वें से ही तक का ये गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। और अभी हमने गीत चलाए थे हाथी मेरे साथी की, वो भी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का है, ये भी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का है। जी हाँ, चलो सुनते हैं ये रोमांटिक ड्यूएट सॉन्ग इस तरह से।
1: हल्की हल्की मुलाकातें थी

0: ये टाइटल सॉन्ग हम आपको सुनाएं, कुछ ना कहो साधना सरगम और अभिषेक जी नहीं साधना सरगम और शान, साधना सरगम और शान शंकर एहसान लोई के साज पर यह टाइटल सॉन्ग आपको सुनाया गया। वो चलिए अगला गीत हम चला रहे हैं, फिल्म 10 नंबरी तो आप देखे होंगे, मनोज कुमार की फिल्म है, मुकेश जी की आवाज़ में और लता जी। चलो सुनते हैं, इन दोनों को कितना दर्द है मुझे भी नहीं पता, मिलकर सुनते हैं।
1: मुझे दर्द रहता है, दिल में दर्द रहता है
0: इतना?
2: अच्छा
1: मुझे

लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर गीत हम आपको सुनाए हैं लता जी और माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। आपने बीच बीच सुने होंगे यह गीत कि दर्द मिटने का क्या दवा है, क्या सुझाव है, क्या हाथफिस है, बस गले में रस्सी बांध लेना और खींचवा लेना। बहरहाल ये मज़ेदार गीत हम आपको सुनाए ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो ते पे सत्ता।

मैं आग दिल में लगा दूंगा, एवरग्रीन किशोर कुमार फिल्म सत्ते में सत्य पे सत्ता में से निकालकर आरडी बर्मन के साज पर हमने ये गीत चलाए हैं। चलिए आप ही हैं और मैं भी हूँ, और चलो हम आपको ये गीत सुनाते हैं इस तरह से, और फिल्म फिल्म फिल्म फिल्म शिकार में से निकाल रहे हैं नेगंतिन अख्तन सस्तक 1968 का ये गीत है। शंकर जय किशन के साज पर

तुम्हारे प्यार में हम बेकरार हो के चले, फिल्म शिकार में से निकाल लेने के दिन। अख्तन सस्तक का ये गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में हमने आपको सुनाए। चलिए जानिए।